FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद मास की नवमी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58:25 हो रहे हैं। हमारे आज के प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण

0: करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने पीएसए चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा पीएसए टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का यह चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है प्रथम पूजनीय गणपति गणेश का स्मरण एवं वंदन करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: कभी माखन की चोरी, कभी मैया से दाऊ की शिकायत, नंदलाल की हर अदा में बसता है निश्चल प्रेम।
1: दाऊ कन्हैया के बड़े भाई हैं तो बड़ा होने के हक भी जताते हैं, छेड़ते भी हैं, तंग भी करते हैं, रुला भी देते हैं। आज कन्हैया रूठ गए और मां यशोदा के पास पहुंच गए दाऊ की शिकायत करने।

ऐसा सुनकर मां ने सोचा कि कन्हैया को तो मनाना ही पड़ेगा। और मां कैसे देख लेती कन्हैया को दुखी

जब मन थक कर संसार से थक जाता है, प्रभु के द्वार ही मिलता है सच्चा सहारा। इसी विश्वास और भक्ति से पुकारता है भक्त, प्रभु आया द्वार तुम्हारे रामा।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर राजेंद्र काजरू, अनूप जलोटा, हरिओम शरण व साथियों के थे। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भगवती चरण वर्मा के विचार। आलेख एवं वाचन डॉक्टर लिली खन्ना का है।
1: किसी राष्ट्र की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां ही राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रीय आदर्शों एवं लक्ष्यों के प्रति जागरूकता पैदा होती है। भावनात्मक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता, दायित्व बोध, अनुशासन, विश्व बंधुत्व एवं मानवतावाद जैसे मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। साहित्य समाज का आईना है। युग परिवर्तन के साथ साथ जीवन मूल्यों में बदलाव आया और यही बदलाव साहित्य और भाषा में परिलक्षित हुआ। हिंदी साहित्य में भगवती चरण वर्मा का पदार्पण छायावाद की नवीन धारा के कवि के रूप में हुआ था। आपने प्रगतिशील कवियों में विशिष्ट स्थान बना लिया। यही नहीं, आप एक अच्छे उपन्यासकार और कहानीकार भी कहलाए। वर्मा जी की कृतियों में जीवन का संदेश छिपा है, उन्हीं की कलम के कुछ अंश। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, केवल व्यक्तियों के सुख के केंद्र भिन्न होते हैं। कुछ सुख को धन में देखते हैं, कुछ सुख को मदिरा में देखते हैं, कुछ सुख को व्यभिचार में देखते हैं, कुछ सुख त्याग में देखते हैं, पर सुख प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। कोई भी व्यक्ति संसार में अपनी इच्छा अनुसार वह काम न करेगा जिससे दुख मिले, यही मनुष्य की मनः प्रवृत्ति है। परिस्थिति एवं प्रसंग के उपयुक्त रोचक एवं प्रभावशाली वातावरण चित्रित करने में वर्मा जी सिद्ध हस्त हैं। आपने अपने प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा में पाप और पुण्य की व्याख्या करते हुए लिखा है, संसार में इसलिए पाप की एक परिभाषा नहीं हो सकती और न हो सकती है। वह न पाप करते हैं और न पुण्य। हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मनः प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के रंगमंच पर एक अभिनय करने आता है। अपनी मन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अपने पाठ को वह दोहराता है। यही मनुष्य का जीवन है। जो कुछ मनुष्य करता है वह उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। वह कर्ता नहीं है, वह केवल साधन है। फिर पुण्य और पाप कैसा? जीवन की अविकल पिपासा के विषय में आपने लिखा है, पिपासा तृप्त होने की चीज नहीं। आग को पानी की आवश्यकता नहीं होती, उसे ग्रहत की आवश्यकता होती है जिससे वह और भड़के। उसी प्रकार जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु। इस कार्यक्रम में आपने सुने भगवती चरण वर्मा के विचार। आलेख एवं वाचन था डॉक्टर लिखन्ना का। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

0: FM 102.2 MHz पर प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर अनुराधा पौडवाल का है, संगीतकार है सतीश भाटिया।
1: किसी राष्ट्र की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां ही राष्ट्र

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का संगीतबद्ध प्रसारण। स्वर अनुराधा पौडवाल का था, संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी प्रातः 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय होगा धान के प्रमुख कीट। वार्ताकार होंगे देवेंद्र कुमार सारस्वत। प्रातः 7:00 आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 7:31 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कवि मुखसो कृष्णचंद्र गौड़ से। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे ब्रज लोकगीत। चित्रपट संगीत गीतांजलि का आनंद हमारे श्रोता लेंगे प्रातः 8:30 पर। हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पर्यावरण में ओबी आधारित फेंट वार्ता, पर्यावरण वृक्षारोपण एवं जन सहयोग। प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की, संयोजक होंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम जिले की हलचल सुना जा सकेगा प्रातः 9:15 पर और कार्यक्रम आबो हवा का समय रहेगा प्रातः 9:25 पर। आज का ये कार्यक्रम आबो हवा होगा जिसमें विषय होगा सामाजिक वानिकी और पर्यावरण। आलेख एवं वाचन होगा श्री हेमंत झा का। ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुना जा सकेगा प्रातः 9:30 पर। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता लेंगे 10:00 से लेकर 11:00 तक। कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी सुना जा सकेगा दिन में 11:00। पर आप सुनेंगे यादों के झरोके से फिल्म संगीत और दिन में 12:00 होगा कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:30 पर। आज के कलाकार होंगे जगदीश प्रसाद। संगत कलाकार होंगे बांसुरी पर श्री लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम पर संगत रहेगी श्री चंद्रेश गोयल की, ढोलक पर संगत होगी श्री अजय शर्मा की और पर्कशन पर होंगे राहुल पाराशर। वनिता लोक कार्यक्रम सुना जा सकेगा अपराह्न 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा आंख है तो जहान है। इसके अलावा चर्चा होगी आपके लाडले का टिफिन पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता भाद्रपद के तीज त्योहार और उनका सामाजिक महत्व। वार्ताकार होंगी अंजलि गंधी। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का। एनसीईआरटी एवं सीआईईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी के साथ। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा नेत्रदान महादान। इसके अलावा आज की बात होगी राज्य एवं केंद्रीय सेनाओं में भर्ती विषय पर।

साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे ब्रजवार्ता। ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर वार्ताकार होंगी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम। भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन सुना जा सकेगा 6:30 पर। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का समय रहेगा 6:50 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी धान की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी बरसात के मौसम में पशुओं के चारे की व्यवस्था विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता खरीफ की प्रमुख सब्जियों में पौध संरक्षण। जानकारी देंगे डॉक्टर कृष्ण अवतार मीना।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है धान के प्रमुख कीट। वार्ताकार हैं देवेंद्र कुमार सारस्वत।
1: किसान भाइयों, इस समय आपके खेतों में धान की फसल खड़ी है। फसल पर अनेक कीटों का आक्रमण हो सकता है। धान पर मुख्यतया जिन कीड़ों का आक्रमण होता है उनमें धान की जड़ सूंडी भी काफी हानि करती है। यह सूंडी धान की जड़ को क्षति पहुंचाती है। यह सफेद उबले चावल के दाने की तरह होती है। यह जड़ को खाली कर देती है जिससे कि धान के पौधे सूख जाते हैं और पैदावार में कमी आती है। इस कीट पर नियंत्रण पाने के लिए खड़ी फसल में क्लोरोपाइरीफास की 3 से 4 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना करके पौधों की निचली सतह पर छिड़काव करना चाहिए। धान का एक अन्य कीट है फुदका कीट। इसकी 2 प्रजातियां धान की फसल पर आक्रमण करती हैं। ये कीट धान की पत्तियों को कुतरते हैं जिससे फसल को नुकसान होता है। इस कीट का रंग हरा होता है और इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों धान की पत्तियां खाते हैं। खेतों में पत्तियां किनारे से कटी हुई मिलती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% धूल जिसकी कि 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों के ऊपर बुरकाव करना चाहिए। धान का एक प्रमुख हानिकारक कीट है गंधी कीट। इस कीट का नाम गंधी कीट इसलिए पड़ा कि इससे एक प्रकार की गंध निकलती है और इस कीट की टांगें बड़ी बड़ी होती हैं। यह कीट धान की बाली आने पर मुख्यतः दुग्धावस्था में धान पर आक्रमण करता है और धान की दूध को ये चूस लेता है जिससे कि धान की फसल को नुकसान होता है। इस कीट की रोकथाम के लिए आप मेलाथियान 5% धूल की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर सकते हैं। धान का अन्य हानिकारक कीट है सफेद और हरे फुदका कीट। ये कीट पत्तियों पर पाए जाते हैं। ये पत्तियों का रस चूसते रहते हैं जिससे कि पत्तियों से रस चूस लिए जाने से पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और फसल से भारी क्षति होती है। इस कीड़े के नियंत्रण के लिए इंडोसल्फान की 35% वाली मात्रा करीब 1 से 1.5 लीटर मात्रा पौधों पर छिड़काव के लिए पर्याप्त रहती है। किसी भी देहिक कीटनाशक का फसल पर छिड़काव करें जैसे कि फास्मेमिडान, मिथाइल डेमियोटान और थायोमिटान, कोई भी दवा आप ले सकते हैं। धान का एक हानिकारक कीट है सैनिक कीट। यह कीट फसल के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसा होता है कि किसान भाई दिन में कोई कीड़ा खेतों में नहीं देख पाते हैं लेकिन सुबह जब खेतों में जाते हैं तो वहां उनकी फसल कटी मिलती है और धान के छोटे पौधे जमीन पर गिरे हुए दिखाई पड़ते हैं और इसका कारण है सैनिक कीट की सूंड़ी रात्रि के समय में सक्रिय होती है और फसल को काट करके गिरा देती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए धान बोने के पहले किसी कीटनाशी के द्वारा भूमि का शोधन करें। धान की खड़ी फसल में आप इंडोसल्फान 35% वाली 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें। धान का अन्य कीट धान की मक्खी है। यह मक्खी धान की दुग्धावस्था में रस चूस लेती है जिससे कि फसल को नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए भी आप मेलाथियान 5% धूल का बुरकाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार धान में लगने वाले इन तमाम कीटों से आपको अपनी फसल की सुरक्षा करनी है और समय समय पर खेत में जा करके

0: भ्रमण करना है और देखना है कि धान की फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई कीट लगा हुआ है तो उसका तुरंत उपाय करना है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था धान के प्रमुख कीट। वार्ताकार थे डॉ. देवेंद्र कुमार सारस्वत। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 वर्षं यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यदि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोरेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमन्त्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ संबंधेभ्यः समर्पितः।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज सम्बन्धान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा, नुवाकोट, धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68-70 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुत

0: एषः दीक्षान्तसमारोहः छात्राणां शैक्षणिकप्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशाराज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावनसङ्कटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर, खेजर, मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुरैया और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है दास्तान। शब्द रचना शकील बदायूं ने की है और इस गीत को धुन से संवारा है नौशाद ने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मदर इंडिया से। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने। इस गीत को धुन से संवारा है नौशाद।

अभी आप सुन रहे थे शमशाद बेगम को फिल्म नगमा में। इस गीत को लिखा था जे नक्शाब ने और इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मदहोश से। आवाज़ है शमशाद बेगम और साथियों की। संगीत से सवारा है इस गीत को मदन मोहन ने और इस गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने।

0: अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और अर्चना को। फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। शब्द रचना मजरू की थी और इस गीत
1: नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम। गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर दिया गया। यह विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह 35वां वैश्विक सम्मान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है और वैश्विक मंच पर नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को एक और मान्यता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।

0: गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में उनकी प्रेरक यात्रा का जिक्र करने पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में मिशन शक्ति सेट के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से देश की हजारों बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। उन्होंने प्रदेश के रामपुर जिले के पटवाई गांव के आकाश और रोहन के स्वच्छता प्रयासों का उल्लेख भी किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन का आग्रह भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की लागत की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लखनऊ छावनी को मॉडल छावनी के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा तय की है।
2: अब उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता में रक्षा सेना के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जा रहा है।
0: अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकसित भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: विकसित भारत का अर्थ है कि जब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले, जब किसी परिवार के घर में साफ पानी पहुंचे, जब किसी नौजवान को खेलने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिले और जब किसी दिव्यांग बच्चे को यह महसूस न हो कि वह समाज के पीछे है, तो मैं मानता हूं कि यही सच्चा विकास है। और मेरा मानना है कि विकसित भारत की यात्रा बड़े शहरों से शुरू होकर हर मोहल्ले, हर बस्ती और हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए।
0: मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री ने कल लखनऊ में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। रक्षा मंत्री ने लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
4: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,30,000 करोड़ के आसपास। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था, आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है।
0: राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य भर में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने 61 बाढ़ राहत शिविर, 21 बाढ़ चौकियां और 198 नावों की व्यवस्था की है। वहां गंगा नदी चेतावनी बिंदु के पास पहुंच गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में 5 सितंबर तक कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बीती देर रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस समय हुई जब यमुना एक्सप्रेस वे पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी तरफ से जा रही कार से जा टकराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और कटर की सहायता से कार के अंदर फंसे सभी चार लोगों को बाहर निकाला तथा उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दुस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है यह सम्मान। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना को बताया महिला सशक्तिकरण का माध्यम, गाजियाबाद की बबीता शर्मा की प्रेरक यात्रा का भी किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ छावनी में लगभग 101 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश ने 9 वर्षों में तय की है सुरक्षा और सुशासन की नई यात्रा। और बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर, मौसम विभाग ने इस सप्ताह भी भारी बारिश की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

श्रोताओं, कैसे हो आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के तीज और त्योहारन की। श्रोताओं, भारत

संस्कृति में भाद्रपद मास को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हते। सावन की हरियाली और झूलन की रौनक के संग भादों को जो महीना आवे जे अपने संग भक्ति उत्सव और लोक परंपराओं की एक नई उमंग लेके आवे है। भाद्रपद मास की शुरुआत ही कई महत्वपूर्ण पर्वन ते होवे है। हरतालिका तीज पे महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें हैं। जे पर्व पति पत्नी के प्रेम विश्वास और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना ते जुड़ो भयो हते। लोक गीतन के संग और पारंपरिक रीति रिवाजन के कारण जे तीज को महत्वपूर्ण पर्व वातावरण में एक अजब सी मनमोहक सुगंध ले आवे है। जाके बाद आवे है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जाको इंतजार तो भक्तन को पूरे वर्ष रहवे ये। आधी रात को मंदिरन में घंटियन की गूंज झांकियन ते सजोवे हो मंदिर और नंदलाल के जन्म की खुशी ते पूरो वातावरण भक्ति में है उठे। विशेष रूप ते हमारे ब्रज में तो कृष्ण जन्माष्टमी की छटा देखते ही बने है। भाद्रपद मास में गणेश चतुर्थी भी बड़े उत्साह से मनाई जावे है। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता मानो जावे है। घरन में सार्वजनिक स्थल और गणपति की स्थापना कर श्रद्धालु उनते सुख बुद्धि और समृद्धि की प्रार्थना करें हैं। जाई भाद्रपद मास में राधाष्टमी को विशेष महत्व हते। राधा रानी के जन्मोत्सव पे बरसाना में और संपूर्ण यानी पूरे ब्रज में भक्ति के रंग में पूरो ब्रजवासी रंग जावे है। भक्तन के ताई राधा कृष्ण को प्रेम केवल एक कथा ना है, बल्कि प्रेम समर्पण और भक्ति को आदर सते। भाद्रपद के पर्व में केवल पूजा पाठ को अवसर ना दे में, बल्कि हमारी लोक संस्कृति को भी जीवंत रखे हैं। तीज के गीत, जन्माष्टमी की झांकियां और गणेश उत्सव की सामूहिक और राधाष्टमी की ब्रजभक्ति, जे सभी हमारी संस्कृति की विधि विविधता को सुंदरता ते दर्शामे हैं। तो श्रोताओ, जब भाद्रपद के सवई त्योहारन की बात निराली है, लेकिन हमारे ब्रज में कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी की बात कछु और ही हते। क्योंकि जब अजन्मा ने जन्म लियो होगो और माँ यशोदा ने लाला के पैर में पैजनिया बांधी होगी, तो गूंज गई होगी पूरी ब्रज, पूरी सृष्टि, पूरो ब्रह्मांड। तो जा गूंज को हम आज महसूस कर सकें जब प्यारे से मीठे से ब्रज लोकगीत के संग। तो आओ मेरे संग भई गूंज को, राधा कृष्ण जन्माष्टमी की गूंज को आज भी महसूस करें। तो सुनो जी प्यारो सो मीठो सो ब्रज लोकगीत।

0: अभी ने आपने सुनो जी मीठो सो ब्रजलोक गीत प्रमोद कुमार शर्मा को गायो भयो। श्रोताओ आओ अब आपको सुनवा देवे जिंदगी के छोटे मोटे उतार चढ़ावन पे आधारित कभी मुक्सो कृष्णचंद्र गौड़ के स्वर में।
1: या उहा पोह भरी जिंदगी से संबंधित कछु मुक्तक प्रस्तुत है कि कदम कदम सरेआम छली गई जिंदगी, कदम कदम सरेआम छली गई जिंदगी और चार दिना की चांदनी सी चली गई जिंदगी और हौसले के हाथ ते सवारवे को मन कियो तो जिंदगी सवारवे में चली गई जिंदगी, जिंदगी सवारवे में चली गई जिंदगी। जिंदगी को एक दूसरा चित्र देखें कि पिक पपिया कह रहे हो, पिक पपिया कह रहे हो कोयल हूँ निस दिन गाय रही, प्रकृति के हर पोर ते धुन निरंतर आए रही और बर्फ सी या देह को नादान कर तो मान है, बर्फ सी या देह को नादान कर तो मान है, कर्ज की यह जिंदगी किस तन में प्रतिदिन जाए रही, कर्ज की यह जिंदगी किस तन में प्रतिदिन जाए रही। एक प्रभु से कि पुरोहित भी तू है और यजमान तू है, पुरोहित भी तू है और यजमान तू है कर्मयोगी और निष्काम तू है, तेरी भक्त वत्सल है लीला निराली, समस्या भी तू है और समाधान तू है, समस्या भी तू है और समाधान तू है। तब मैंने प्रभु ते कही कि छाई जो दुख की बदली बाकू तू छांट दीजो, छाई जो दुख की बदली बाकू तू छांट दीजो, चाहिए न मोकु दौलत ना ठाट बाट दीजो, इतनी है तोते मेरी केवल बिनय मुरारी, अब तक तो काट दीनी आगे हु काट दीजो, अब तक तो काट दीनी आगे हु काट दीजो। समय को कैसो परिवर्तन है, एक मुक्तक देखें कि छल कपटते आदमी भरपूर कैसे है गयो, छल कपटते आदमी भरपूर कैसे है गयो, या गिरावट के लिए मजबूर कैसे है गयो, थक गई सारी दिमागी नस ये दिन भर सोचकर, आदमी अब आदमी ते दूर कैसे है गयो, आदमी अब आदमी ते दूर कैसे है गयो। हम गामन ते शहर में आए गए पर कछु चीज ऐसी है कि जो मन को कचोटे, कि ऊंची इमारत है गई संपूर्ण सुख साधन जहां, कि ऊंची इमारत है गई संपूर्ण सुख साधन जहां, फिर भी पुरानी याद दिल में कुल बुलावे है, हमारे द्वार की घंटी है आगंतुक को आकर्षण, पर पुराने घर की सांकल आज हूँ हमको बुलावे है, पुराने घर की सांकर आज हू मोकू बुलावे है। पावस ऋतु है कछु कवित्त कि पिय आवन की सखी बाट तकूं, पिय आवन की सखी बाट तकूं पर राह भई सवरी अनजानी, मन भावन पावस ना ही लगे और मेघ मल्हार करे मनमानी, मन भावन पावस ना ही लगे और मेघ मल्हार करे मनमानी, हूँ किसी कोयल कूक उठे चमके चपला मन में इतरानी, सखी आग लगे ऐसे पावस में जहाँ भीतर आग है बाहर पानी, सखी आग लगे ऐसे पावस में जहाँ भीतर आग है बाहर पानी। दूसरो कवित्त देखें कि पावस मस्त महीना है साल को और झूम रही देखो देह दुआरी, अंत अनंत की बात करूं कहा छाए रही ब्रज में हरियारी, और राधा पे मोहित श्याम भय घन श्याम बसे ही राधिका प्यारी, और झूला पे बैठी किशोरी प्रिया और देते हैं झोटा श्री बांके बिहारी, झूला पे बैठी किशोरी प्रिया और देते हैं झोटा श्री बांके बिहारी, देते हैं झोटा श्री बांके बिहारी। एक और दृश्य देखें कि फूट पड़े नव अंकुर धरा भई हरी भरी, कि फूट पड़े नव अंकुर धरा भई हरी भरी, बागन के बीच फैली कैसी अमराई है, और कोपल कपोल मध्य गुंजित भ्रमरदल मन भावन उदित होत प्रात की अरुणाई है, कोपल कपोल मध्य गुंजित भ्रमरदल मन भावन उदित होत प्रात की अरुणाई है, वन बाग उपवन तड़ाग तरु पल्लव लख कली कली डालन पे कैसी मुस्काई है, और देख के अनोखो रूप सजी भई दुल्हन सी, जन जन प्रफुल्लित कहे पावस ऋतु आई है, जन जन प्रफुल्लित कहे पावस ऋतु आई है, जन जन प्रफुल्लित कहे पावस ऋतु आई है। कछु दिना के उपरांत भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो एक कवित्त कि नंद की पौर पे

दौर पड़े कि नंद की पौर पे दौर पड़े जुर के मिल के सब गाम गयो सुत जायो जसोदा ने जैसी सुनी हर्षित मन मोर सकाम भयो कि नंद की पौर पे दौर पड़े जुर के मिल के सब गाम गयो सुत जायो जसोदा ने जैसे सुनी हर्षित मन मोर सकाम भयो ब्रज माही उमंग अनंत मची ब्रज माही उमंग अनंत मची सजे तोरण द्वार ललाम भयो और देवहु आए गए ब्रज में सिगरो ब्रज स्वर्ग सोधाम भयो सिगरो ब्रज स्वर्ग सोधाम भयो सिगरो ब्रज स्वर्ग सोधाम भयो। कछु बात है जाए तो बात क्या भई है कछु समझ नहीं आई बात बात का भई है कछु समझ नहीं आई बात अकारण जो भई बात बात ही बतावेगी और बात को यदि बात ते खत्म ना कियो तो बात ही बात में ये बात बढ़ जावेगी बात को यदि बात ते खत्म ना कियो तो बात ही बात में ये बात बढ़ जावेगी और कौन ने कही है बात कौन ते सुनी है बात बिना बात कौन ने ये आग सुलगाई है बात को छिपावे मत खुल करके कर बात बैठ करके करो बात बात बन जावेगी बैठ करके करो बात बात बन जावेगी बैठ करके करो बात बात बन जावेगी। कछु कवि और कवि इनके कृतित्व से संबंधित कि मैथिली शरण के द्वापर और प्री प्रवास मैथिली शरण के द्वापर और प्रिय प्रवास धर्मवीर भारती की कनुप्रिया निराली है रत्नाकर रचित भाव उद्धव शतक काव्य उमा शंकर शुक्ल के रसाल की रसाली है हिंदी और हिंद में रमे भारतेंदु कवि हिंदी और हिंद में रमे भारतेंदु कवि मधुशाला बच्चन की अनुपम निराली है और भारती के माथे की हिंदी है बिंदी बंधु यही एक भाषा जो सबकी रखवाली है यही एक भाषा जो सबकी रखवाली है। कि राधा ने रचायो रास कि राधा ने रचायो रास रसराज रसिक संग कृष्णा ने जब बाय निधवन बुलायो है और कंगन ते कुंड खोद श्री धाम राधा कुंड अष्टमी अहोई हित हाथ बटायो है कि कंटक करीलन में दिन रात संग लग कंटक करीलन में दिन रात संग लग भवर कारे कृष्णा को मनते अपनायो है और रुक्मिणी ने राज कियो द्वारिका महल जाए दोष कहा राधा को जो श्याम ने भुलायो है दोष कहा राधा को जो श्याम ने भुलायो है। ठाकुर दाऊदयाल जी की स्तुति में कवित्त कि ब्रज को ब्रजराज सरताज ब्रजवासिन को ब्रज को ब्रजराज सरताज ब्रजवासिन को सफल हो मनोरथ और मंगल करण है रिद्ध सिद्धि दाता विधाता ब्रजवासिन को होए पूर्ण कारज जो जावे शरण है भ्राता श्री कृष्ण के और गुरु मल्ल विद्या के भ्राता श्री कृष्ण के और गुरु मल्ल विद्या के मातु रेवती को जन्ने कियो ये वरण है या नतमस्तक कटेंगे कलेश सब सबके रखवारे श्री बलराम के चरण है सबके रखवाले श्री बलराम के चरण है सबके रखवाले बलराम के चरण है। एक गीत देखें कल्पना को कि काश में होतो नदी के तीर को एक वृक्ष काश में होतो नदी के तीर को एक वृक्ष आती जाती लहरियन ने देख तो प्रत्यक्ष आती जाती लहरियन ने देख तो प्रत्यक्ष टूटते बिछड़े समय की वर्जनाएं देख तो निज दृष्ट से रथ की क्रियाएं आसक्त के बंधन खड़े वन पक्ष काश में होतो नदी की तीर को एक वृक्ष प्यास कितने की बुझी या तीर पे शेर कितने ने कहे थे गाले वो मीर पे कौन पीछे हट गयो और कौन साधो लक्ष्य काश में होतो नदी के तीर को एक वृक्ष कौन बिछड़ो कौन जीवन को बनो राही मैं समय के साथ में देतो गवाही काल को वो चक्र करतो फैसलो निष्पक्ष काश मैं होतो नदी के तीर को एक वृक्ष कसमे वादे चांद की वा चांदनी में कसमे वादे चांद की वा चांदनी में गीत भ्रमरन के सिशक्ति यामिनी में कठिन प्रश्नन संग में बन खड़ो जब यक्ष काश मैं होतो नदी के तीर को एक वृक्ष आती जाती लहरियन ने देख तो प्रत्यक्ष। उद्धव जी के संदर्भ में कि कृष्ण ने पठाए आए गोकुल में उद्धव जी कृष्ण ने पठाए आए गोकुल में उद्धव जी गली गली गैल गैल राह अनजानी में और नंद जू की पौर दौर दौर सखी आन लगी सुनवे कु नाम अपनो कृष्ण की कहानी में कि नंद जी की पौर दौर दौर सखी आन लगी सुनवे कु नाम अपनो कृष्ण की कहानी में मोकू कही है कहा मोकू कही है कहा कहन लगी सवे सखी अपनी।

0: जवानी में और गोपिन को बिरह देख बोल बेते पहले कछु उद्धव को सबरो ज्ञान बह गयो पानी में, उद्धव को सबरो ज्ञान बह गयो पानी में। अभी एक सखी कह रही है उद्धव जीते कि ज्यादा मत बोल उद्धव मथुरा को लौट जाओ, ज्यादा मत बोल उद्धव मथुरा को लौट जाओ, भक्ति वैराग्य ज्ञान हमकू सिखाओ ना, पूछो कदम पातनते यमुना के घाटनते सूखी भई यमुना को और तुम सुखाओ, पूछो कदम पातनते यमुना के घाटनते सूखी वही यमुना को और तुम सुखाओ ना, तुम कहा जानोगे बिरह की व्यथा कथा, तुम कहा जानोगे बिरह की व्यथा कथा, प्रेम लगी अगन लगन और भड़काओ ना, और हमको सुनाओ ना कृष्ण की कहानी कछ हमरी कहानी जाए कृष्ण को सुनाओ ना, हमरी कहानी जाए कृष्ण को सुनाओ ना। एक वृंदावन के ऊपर क्यों बनते प्रतिदिन समाचार, क्यों बनते प्रतिदिन समाचार, या जीवन को इतिहास करो ये बाड़ी संत महंतन की तुम या पे दृढ़ विश्वास करो, फंस करके भौतिक तृष्णा में क्यों जीवन सत्यानाश करो, यदि मुक्ति मार्ग चुनो चाहो वृंदावन आय के बास करो, वृंदावन आय के बास करो। क्यों बास करो कि वृंदावन संतन की भूमि, नित राधे राधे गाने यहां, वन वृक्ष सिलान को भी होतो है सम्मान यहाँ, निधिवन में काना रास रचे और बंसी की ताने यहाँ, वन वृक्ष सिलान को भी होवे है सम्मान यहाँ, और मीरा की पीरा यहीं दिखी और काबुल को रस खाने यहाँ, मीरा की पीरा यहीं दिखी और काबुल को रस खाने।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कवि मुखसो कृष्णचंद गौड़ के स्वर में। श्रोताओ, चतुर्मास चल रहे है, जा जीवन की भागम भाग में ते समय निकाल के आओ हमारे संग मिलके कर लो नाम संकीर्तन।

अभी आप सुन रहे हैं हत्ते ब्रजेंद्र तिवारी को गायो है और जे ब्रज लोकगीत जाई ब्रज लोकगीत के संग दुर्गेश भास्कर की तरफ ते जय श्री कृष्ण जय श्री राधे।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लड़ाक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्र

0: राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केउंझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान

0: प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाओ अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञान वर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फोरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी

0: Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर. प्रस्तुत है चित्रपट संगीत गीतांजलि. कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं उपकार फिल्म का. आवाज है लता मंगेशकर की. इस गीत को लिखा है गुलशन बाबरा ने और इस गीत को धुन से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने.

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
2: किधर है?
3: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
2: ये तो झटपट काम है।
3: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
3: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान।

0: आरबीआई कहता है
1: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आंधी से, आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की है और इस गीत को धुन से संवारा है राहुल देव वर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म में सूरज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। किशोर कुमार की आवाज़ है, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। इस गीत को धुन से संवारा है आरडी बर्मन ने और मजरू की रचना है।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था मेरे जीवन साथी। इस गीत को लिखा था मजरू ने और इस गीत को संगीत से संवारा था आरडी बर्मन ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत गीतांजलि का। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से। आवाज है किशोर कुमार की, साथ में हैं लता मंगेशकर। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत को धुन से संवारा है आरडी बर्मन ने।

और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आवाज है लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। इस गीत को लिखा है अनजान ने और इस गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर के गाए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत गीतांजलि का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हिंदी वार्ता, पर्यावरण क्रम में ओबी आधारित भेंटवार्ता, पर्यावरण वृक्षारोपण एवं जन सहयोग। प्रस्तुति रश्मि शर्मा की है, संयोजक हैं ओपी।

0: रूप से वृहद वृक्षारोपण किया जा रहा है। और इस समय हम हैं गांव भरतिया में, जहां आज लाडली वन का निर्माण वृक्षारोपण के माध्यम से किया जा रहा है। और आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं हमारे जनपद मथुरा की डीडीओ मैडम गरिमा खरे जी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो विशेष आयोजन है, इसके संदर्भ में हमारे श्रोताओं को विस्तृत रूप से जानकारी दें।
1: नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी सरकारें पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद चिंतित और संवेदनशील हैं, और इसके संरक्षण के लिए और घटते हुए वन के प्रभाव को उसके क्षतिपूर्ति के लिए विगत कई वर्षों से वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वृहद वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर में 35 करोड़ वृक्षारोपण किया जाना है और जनपद मथुरा को भी 33,26,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में पूरे जनपद में विभिन्न साइटों पर वृक्षारोपण हो रहा है। इस बार एक खास बात जनपद मथुरा के क्रम में बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पहल पर यहाँ पर एक लाडली वनों का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि मियावाकी पद्धति पर आधारित है। ये जापान के एक डॉक्टर अकीरा मियावाकी थे, इन्होंने प्राकृतिक वनों को संरक्षित करने और लगाने के पर एक पहल की थी, जिसमें विभिन्न श्रेणी के वृक्षों को एक साथ लगाया जाता है। ये कम स्थान पर ज़्यादा पौधे इसमें लगाए जा सकते हैं, छोटी जगह में ज़्यादा फॉरेस्टेशन इससे संभव होता है। तो यहाँ पर आज सभी विकास खंडों में सभी जगहों पर लाडली वन भी लगाए जा रहे हैं और वृहद वृक्षारोपण चल रहा है। ये एक उत्सव जैसा माहौल है। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान रहा है कि इसको हम लोगों से को इस अभियान से जोड़ें, उसको इस उत्सव की तरह मनाएं, जैसे कि हमारे यहाँ और उत्सव मनते हैं, ताकि वो उनसे जुड़ाव महसूस करें और प्रकृति के साथ जुड़ाव को महसूस करते हुए इसके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के भाव को समझें। आज हमारे क्षेत्र के विधायक जी माननीय श्री पूरन प्रकाश जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उन प्रतिभागिता कर रहे हैं। उनके अध्यक्षता में ये वृक्षारोपण हो रहा है और मुझे आशा और विश्वास है, यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, महिलाएँ उपस्थित हैं, कि ये सब पर्यावरण से जुड़ने के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, सीखेंगे और उनसे उनका लगाव बढ़ेगा और इस तरह से हमारे वनों के, हमारे पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा में संवर्धन ज़रूर होगा।
0: जी बिल्कुल। आज विशेष रूप से कौन कौन से पौधे इसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं?
1: बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया कि इसमें 4 तरह के पौधे लगाए जाते हैं। तो इसमें नीम, जामुन, पीपल, बरगद, शीशम, अर्जुन, ये कैनोपी लेयर में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर अमलतास, कदम, पापड़ी, इन पौधों को लगाया जा रहा है। कुछ फलदार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें आंवला, बेर, हरसिंगार आदि सम्मिलित हैं। और फिर जो है कुछ पौधे और झाड़ीदार वृक्ष हैं, करी पत्ता, मेहंदी, विस्कस, इन सब का उस श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।
0: इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री पूरन प्रकाश जी ने पौधारोपण करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन भी प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण का भी संकल्प लेने का आह्वान किया।
2: अगर हमारे कर्म अच्छे, का भी चिंता मत करो, किसी की चिंता मत करो, कर्म अच्छे तो हमें भगवान अच्छा फल देगा। और हमारे मीठी मीठी बात करें, लच्छेदार भाषण करें और कर्म खराब है तो हमें बेफल फल मिलेगा। आज आपके जो हमारे मेन हमारा जो आज कार्यक्रम जो पेड़ का है, बड़ी हल्की सी लगे बोलने चालने में तो पेड़ की बात, लेकिन आज इसको देखें, इस पेड़ से जहां आपने लगा दिया तो पेड़ बड़ा हो रहा है, आपके परिवार के नाम से पेड़ लगा है, उसको आप सींच रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, तो जब बड़ा हो जावे उस और कछु देना दे पे छाँव देगा, धूप में खेत में पानी लगा के आए पसीना दे रहे हैं, कहाँ जाएगा बाकी नीचे खड़ी है जाओ, जोर से अगर ओले ओले पड़ रहे हैं तो तू टांट बचेगी, कहीं लगो तो फूट जाएगी, बारिश हो रही बहुत से बचोगे, अब हमें लग गए फल लग गए, बिंदक तुम्हें खाओगे, ठीक है क्या नहीं है।

0: और सबसे बड़ी चीज है जो आप महसूस नहीं करते, आज के समय पर जो प्रदूषण हो रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, सबसे ज्यादा अगर मिलती है ऑक्सीजन तो पेड़ों से मिलती है।
1: इस अवसर पर उप जिलाधिकारी श्रीमती उषा सिंह ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और ऐसे अभियान समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया और वृक्षों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी ली। सभी विद्यार्थी वृक्षारोपण को लेकर उत्साहित नजर आए।
2: लोगों ने कभी किसी ने भी अभी इससे पहले पेड़ लगाया? किस किसने लगाया है?
3: हाथ उठाओ सब लोग।
2: जी
4: नाम बताओ, अपना नाम बताओ।
2: अच्छा चलो, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपका नाम हिमांशु, किसका पेड़ लगाया?
5: अमरूद के।
2: अमरूद जामुन। तो अभी कितना टाइम हो गया पेड़ लगाए हुए?
5: हो गया एक महीना
2: पहले लगाए था,
5: स्कूल में लगाए थे,
2: उससे पहले भी लगाए हैं, स्कूल में लगाए हैं। अच्छा, तो अभी किस चीज का पेड़ लगाया आपने पहले?
5: उन्हें पहले अमरूद का लगाया था।
2: आपका नाम?
6: सेंगी।
2: आपने कौन सा पेड़ लगाया?
6: जामुन।
2: कितने टाइम पहले लगाया?
6: अभी लगाया था।
2: अच्छा, जामुन का अभी लगाया है। तो अभी पहली बार प्लांटेशन जामुन का पेड़ का किया आपने?
6: हाँ।
2: अच्छा, अभी इस समय आज जब आपने फ्रेंड्स के साथ में आप यहाँ पेड़ लगाओगे,
6: हाँ,
2: तो कुछ और एनर्जी बढ़ रही है, कुछ और उत्साह है कि सबने अपने सभी क्लासमेट्स के साथ में, उनके साथ में पेड़ लगाने का एक अनुभव,
6: हाँ,
2: आज आपको होने जा रहा है,
6: हाँ,
2: तो अभी क्या फील हो रहा है आपको?
6: अच्छा
2: लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है?
6: बहुत।
2: आपका नाम?
7: मिथिलेश।
2: अच्छा, आप ये बताइए, आपने कभी किया है प्लांटेशन?
7: हाँ।
2: प्लांटेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है?
7: ऑक्सीजन के लिए, छाया के लिए, हवा के लिए,
2: और फल।
7: हाँ, फल फूल के लिए।
2: फल के पेड़ लगाओगे तो फल भी खाने को मिलेंगे,
7: हाँ,
2: है ना? आपका नाम?
8: दीक्षा।
2: आपने कभी पेड़ लगाया?
8: हाँ।
2: कौन सा लगाया?
8: मैंने पीली कनेर का लगाया था।
2: पीली कनेर का, हाँ। तो फूल आ रहे होंगे,
8: हाँ।
2: फिर उन फूलों को कभी तोड़ा है,
8: हाँ,
2: या
8: हाँ,
2: लगे रहने देते हैं?
8: नहीं, एक फूल रोज तोड़ते हैं मंदिर में।
2: अरे वाह, मंदिर में चढ़ाते,
8: हाँ,
2: हैं, बहुत सुंदर। तो अभी आज अपने फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पे आए हो, तो कैसा लग रहा है? इकट्ठे
8: अच्छा
2: सब लोग
8: लग रहा है।
2: प्लांटेशन करेंगे,
8: बहुत अच्छा लग रहा है।
2: और आपका नाम?
9: आयशा।
2: आयशा, आपने कभी किया है प्लांटेशन? कब किया?
9: स्कूल में प्राइमरी में पढ़ना है,
2: हाँ,
9: तब लगाए।
2: कितने पेड़ लगाए?
9: दो तीन पेड़ लगाए।
2: तो अभी कितने बड़े हो गए पेड़?
9: जामुन लगने लग गई वहाँ पे।
2: जामुन लगने लगी है, तो जामुन खाती हो फिर उसकी तोड़
9: के? उसमें लगा लगाई।
2: अच्छा, स्कूल से निकल गई हो अब उस वाले में से। अच्छा चलो, अभी पेड़ लगाते हैं हम। तुम्हें पता है हम पेड़ क्यों लगाते हैं?
9: ऑक्सीजन के लिए, और बाहर के लिए, फल फूल के लिए।
2: अच्छा, और इसके अलावा देखो, फल फूल हमें तो मिल ही रहे हैं, बाकी आसमान में जो पंछी हैं उनको भोजन कहाँ से मिलेगा? उनको भोजन इन्हीं पेड़ों से मिलेगा ना। तो आप पता है, जाने अनजाने में आप लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भंडारा करवाते हैं और लोगों को भोजन करवाते हैं, आप सिर्फ एक पेड़ लगा के कितने पंछियों को भोजन दे देंगी? एक कितना बड़ा काम आपके हाथ से होने जा रहा है, आप सबके हाथों से। एक एक पेड़ पर जब फल आएगा, चाहे वो गूलर आए, अमरूद आए, जामुन आए, बेर आए, कोई भी फल आए, तो आप कितने सारे पंछियों का एक बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा, उनका पेट भरेगा आपके लगाए हुए पेड़ से। तो ये फीलिंग अपने आप में कैसी है?
9: अच्छी है।
2: तो अभी सारे बच्चे जोर से अब हमारे ब्रज में पूरा हरा भरा बनाने के लिए प्रयास करेंगे और सजाएंगे लाडली वन को। अच्छा, लाडली वन में पानी देने कौन कौन आएगा?
10: सब
2: आएंगे, सबकी जिम्मेदारी रहेगी लाडली वन को सजाने की।

0: जिस भूमि पर यह वृक्षारोपण किया गया वह पहले की स्थिति से अवगत कराते हुए आप हैं गांव भरतिया के प्रधान श्री हरवीर सिंह जी।
1: हरवीर सिंह जी, इस जगह पर जहां आज यहां लाडली वन बनाने जा रहे हैं हम लोग, वृक्षारोपण किया जाना है, तो अभी इससे पूर्व यहां क्या था और क्या स्थिति थी इस जगह की?
2: इस जगह ये वैसे ही पड़ा हुआ था, इसमें जो पहाड़ वाले जो कंकड़ वगैरह हैं ये थे यहाँ पे, दो तीन दिन से सफाई कर रहा है। अभी दो तीन दिन पहले हमें पता चला, मैम ने बताया वीडियो मैडम ने, कैसे ऐसे वृक्षारोपण होना है
1: जी।
2: उसी क्रम में हमने सफाई वगैरह जेसीबी वगैरह ये सारी चला के बोला अच्छा लगेगा, ये पूरा सही किया, कंप्यूटर मांजा वगैरह किया।
1: अच्छा, अभी आज जो ये जमीन जहाँ पर ये वृक्षारोपण होना है ये लगभग कितनी जमीन है?
2: करीब होगी 5 बीघा।
1: 5 बीघा?
2: 5 बीघा।
1: और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे गड्ढे वगैरह सब कुछ किए जा रहे हैं, ये सारा काम शासन प्रशासन के सहयोग से
2: जी
1: हो रहा है, सभी के सहयोग से हो रहा है। लेकिन आज का इवेंट होने के बाद में सभी लोग चले जाएंगे, आप गांव के प्रधान हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी
2: जी हमारी रहेगी। इसमें इसी वजह से हम जो है एंगल लगवाएंगे, तार फेंसिंग है और इसमें एक समर जरूरी है, फिर क्या फ़ायदा हुआ जब पेड़ सूखेंगे तो पानी के लिए एक समर में लगाऊंगा
1: जी।
2: वो मैं दो आदमी भी नियुक्त करूँगा जो यहाँ डेली इन्हें पौधों में पानी देते रहे।
1: तो कुल मिला के हम ये उम्मीद कर सकते हैं हाँ। आने वाले कुछ वर्षों में लाडली वन बहुत सुंदर
2: जी जी बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगेगा
1: बहुत अद्भुत होगा। धन्यवाद।
0: एक वृक्ष माँ के नाम यह अभियान विगत कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन भाजपा मंडल अध्यक्ष ने इस अभियान को हमारे जीवन से जुड़े हुए सभी रिश्तों से जोड़ते हुए सभी से अपील की और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने के लिए अनुरोध किया।
3: जिस तरह से हम सभी अपना अपना दायित्व मानकर एक एक कम से कम एक पौधा, जैसे अभियान चल रहा है हमारी सरकार का, हमारी संगठन का जो मंशा है एक पेड़ माँ के नाम, ये अभियान है। लेकिन अब तो हमारे संगठन ने निर्देश दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम तो चल ही रहा है, पिछले कई सालों से अभियान चल रहा है। अब हम अपने घर में हमारे जितने भी सदस्य हैं हम अपने एक पेड़ अब माँ के नाम लगा सकते हैं, एक पेड़ हमारे पिता के नाम से लगा सकते हैं, एक पेड़ हम अपनी पत्नी के नाम से लगा सकते हैं, अपने बच्चों के नाम से लगा सकते हैं और अपने दोस्तों के नाम से भी लगा सकते हैं। इस तरह से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए। जो भी हमारी मातृशक्ति है वो अपने पति के नाम से भी लगा सकती है, क्योंकि वैसे भी मातृशक्ति तो पति की लंबी आयु के लिए बहुत व्रत रखती है। पेड़ पौधे लगाकर हम अपनी धरती माता का श्रृंगार करेंगे, यही हमारी और हमारे संगठन की मंशा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
0: लाडली वन के वृक्षारोपण अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, विद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। लाडली वन अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि एक एक पौधा धरती को हरा भरा बनाने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा, एक परिवार एक हरित भविष्य।
4: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण क्रम में वार्ता, ओबी आधारित भेंट वार्ता, पर्यावरण वृक्षारोपण एवं जन सहयोग। प्रस्तुति थी रश्मि शर्मा की, संयोजक थे ओपी सिंह। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
1: वाराणसी में बीते दिनों भारत आए 200 सदस्यीय उच्च स्तरीय जापानी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। जापान के यामानासी प्रीफेक्चर के गवर्नर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में जापान की प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और सीईओ शामिल रहे। वाराणसी पहुंचने पर शहर के प्रवेश द्वार पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और पिंडरा विधायक अवधेश सिंह ने जापानी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाराणसी में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। इसके बाद दल ने नमो घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखा और काशी की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को करीब से जाना। दौरे को उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पर्यटन निवेश तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडो श्रीलंका बुद्धिस्ट सोसाइटी के महासचिव के सीमु थोरे ने बताया कि
2: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और देश में हर जगह में बौद्ध परिपथ, धर्म स्थल का रास्ता और एयरपोर्ट स्टेशन, हर तरफ का विकास हो रहा है। भारत एक विश्व गुरु बनाने के लिए, आर्थिक शक्ति बनाने के लिए प्रयास में है। उसी रास्ता सफल होने के लिए जापान और इंडिया दोनों देश रिश्ता आगे बढ़ने से देश बहुत मजबूत होगा विश्व में।
1: वाराणसी में आयोजित फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI के 56वें वार्षिक समारोह के अंतिम दिन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से जुटे होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसर में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन क्षेत्र में किए गए निवेश, पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के प्रयास, करों में कमी और GST में राहत से इस क्षेत्र की संभावनाओं का और विस्तार हुआ है। सरकार की नीतियां और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण एनेबलर्स हैं, लेकिन इन अवसरों को जमीन पर उतारने में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समारोह में देश भर से होटल, रेस्टोरेंट और आतिथ्य उद्योग से जुड़े व्यवसायी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की चुनौतियों, बदलती उपभोक्ता मांग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा की गई। काशी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में 22 से 24 अगस्त तक आयोजित ओडिशा पर्व में ओडिशा की संस्कृति, कला, खान पान, हस्तशिल्प और पर्यटन की जानकारी देते हुए ओडिशा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिडा ने कहा कि
3: इन्वेस्टमेंट को ओडिशा लाने के लिए, जो हॉस्पिटल सेक्टर को ओडिशा बुलाने के लिए हमने ओडिशा पर्व का आयोजन किया। हमारी कुजिन का, शोके सेक्टर, हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट का और हमारी डायस्पोरा जो हमारी ओडिशा की ताकत है, उनसे मिलके बातचीत करने के लिए भी हम आए। वो सब अच्छे से संभव होगा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से।
1: भारत सरकार के भारत पर्यटन वाराणसी कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से स्थानीय होटल में होम स्टे एवं बेड एंड ब्रेकफास्ट संचालकों तथा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों के लिए अर्ध दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय के सचिव भुवनेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्य के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पर्यटक यात्रा के प्रत्येक पहलू, बुनियादी ढांचे एवं पर्यटन सुविधाओं की गुणवत्ता, आतिथ्य, सेवा वितरण, डिजिटल सहभागिता, सुरक्षा तथा समग्र पर्यटन अनुभव को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। श्री भुवनेश कुमार ने कहा कि इस प्रकार की क्षमता निर्माण संबंधी पहल पर्यटन उद्यमों को अधिक व्यावसायिक कार्य प्रणालियाँ अपनाने, सेवा मानकों में सुधार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने तथा पर्यटकों की बदलती आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम बनाएगी। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने कहा कि स्थानीय पर्यटन हितधारक वाराणसी के पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी को और अधिक टूरिस्ट फ्रेंडली शहर बनाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने होम स्टे एंड B&B संचालकों से पर्यटकों के साथ व्यवहार में संवेदनशीलता, धैर्य और सहयोग की भावना रखने की अपील की। कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन मार्केटिंग, संपत्ति की ऑनलाइन लिस्टिंग, डिजिटल प्रचार प्रसार, परिचालन प्रबंधन, अतिथि सत्कार, ग्राहक सेवा, स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों तथा ऑनलाइन समीक्षाओं के प्रबंधन जैसे विषयों पर प्रस्तुतियां एवं व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर अपने पर्यटन व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने तथा अधिक पर्यटकों तक पहुंचने के संबंध में भी जानकारी दी गई।
0: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
4: बांदा में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार

0: को लेकर शहर और गांव के बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दी। इस बार बाजार में चाइनीज राखियों की जगह देसी और हाथ से बनी राखियों की मांग ज्यादा दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दिए जाने से बहनों में भी उत्साह का माहौल रहा। महिला के साथ एक सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलने से महिलाएं काफी खुश नजर आईं और उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिला यात्रियों ने कहा कि वे सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं।
1: गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है बस की हमको, जिससे हम बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए एक सुविधा दिया है कि उन्होंने फ्री किया है रक्षाबंधन के लिए 3 दिन का, उसमें एक सहयोगी भी है। ये चीज हमको सरकार की बहुत अच्छी लगी और इस चीज से हम लोग बहुत खुश हैं और हम उनके बहुत आभारी रहे।
0: जनपद के स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में विगत 25 अगस्त को नियुक्त पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा के अंतर्गत जनपद के चयनित 43 प्राविधिक सहायकों को प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित नव नियुक्त प्राविधिक सहायकों को बधाई देते हुए प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि उम्मीद है कि आप लोगों को जो नए दायित्व मिले हैं उनका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि
2: जनपद बांदा में 43 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के बच्चों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया है, जिस पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ में उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, कहीं कोई किसी प्रकार की उन्हें समस्या नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साफ स्वच्छ और निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ में मिला है।
0: वहीं नव नियुक्त परीक्षार्थियों ने खुशी जाहिर करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। बांदा के स्थानीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विगत 12 अगस्त को 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के प्रतिनिधि के तौर पर उनके विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने की। दीक्षांत समारोह में शामिल होने बांदा पहुंचे राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने विश्वविद्यालय के 250 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही 18 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। वहीं दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी खुश नजर आए और सम्मान के लिए कुलपति का आभार जताते हुए कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए सुधीर एम बोबड़े ने कहा कि इस बार दीक्षांत समारोह में पहली बार बच्चों के साथ शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है।
3: विश्वविद्यालय में 250 बच्चों की उपाधियां दी गई है और उसके साथ साथ 18 मेडल्स दिए गए, उसमें से 10 बालिकाएं और 8 हमारे बालक है। कुल मिलाकर बेटियों को अगर मौका मिलता है तो शिक्षा में आगे बढ़ सकती है, ये कुलाधिपति महोदय का संदेश है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि उनके पास आने वाली सभी तरह की जन समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए। इसकी निगरानी भी मुख्यमंत्री कार्यालय की जाती है, जिसको लेकर जनपद में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली IGRS से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में जनपद बांदा पुलिस को प्रदेश के 75 जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि IGRS पोर्टल पर जो पुलिस से संबंधित शिकायतें होती हैं उनका समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाता है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मंडल, जोन और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।
4: शासन द्वारा एक IGRS पोर्टल चलाया जाता है, काफी समय से चल रहा है। ये एक बहुत ही नवीन पहल है ये सरकार की। पुलिस का जो पोर्टल है उसमें जितने भी पुलिस संबंधित समस्याएं किसी को भी रहती हैं वो पोर्टल पे जाकर के बहुत ही 2 मिनट के अंदर अपनी शिकायत प्रार्थना पत्र अपलोड कर सकता है। ये मुख्यालय स्तर से भी जो CM ऑफिस है वहां से भी एक IGRS वहां पे सेल है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है और लोगों से व्यक्तिगत बात करके उनका संतुष्टि पूछता है।
5: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा। आज का विषय है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण। आलेख एवं वाचन

विकास का एक पक्ष यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी, चरागाह, ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप किसानों के लिए मैदानी खेतों में बाढ़ या सूखे की स्थिति बन गई है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि देश को प्रदूषण, वन विनाश और मरुस्थलीकरण की स्पष्ट जीवन संकटमयी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि समय रहते हम अपने तुरंत के स्वार्थों में लिप्त होकर गांवों में पेड़ पौधों को काटते रहे तो पर्यावरण का पतन हो जाएगा और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव औसत तापमान को बढ़ाकर हमारे कृषि प्रधान देश को नष्ट कर देगा। और यह भी सुनिश्चित है कि स्थानीय संसाधनों व जंगलों के क्षीण होने पर इसका विस्तृत क्षेत्रों पर परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। अतीत में हम अपने ग्रामीण संस्कृति व पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रति संवेदनशील रहे हैं, लेकिन अब हम परिस्थितिवश और परिवेशगत तनावों को पैदा कर वनों को पतन करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। अतः हमारी सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं का निर्माण करते हुए उसकी सफलता के साथ क्रियान्विति प्रभावशाली ढंग से की जाए। सामाजिक वानिकी एक विकासात्मक आयोजन है जिसमें नीति निर्धारण और परियोजना क्रियान्विति के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकार, भूमिका, लाभ और सहभागिता को विस्तृत रूप प्राप्त होगा। हमारे देशवासी वैदिक काल से वृक्षों एवं नदियों को पूजते आ रहे हैं। तुलसी, वट, पीपल, बेल व आंवला आदि वृक्षों की आज भी हम पूजा करते हैं। जब जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन था तब प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर अपनी अपनी सीमाओं पर वन क्षेत्रों को समेटे था। बढ़ती जनसंख्या व प्रगति के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए वनों को द्रुत गति से काटा गया, जिसके फलस्वरूप वह भूमि खेती के लिए काम में आने लगी या बंजर ही पड़ी है। आज बचे खुचे वन भी विनाश की कगार पर खड़े हैं। अतः सामाजिक वानिकी योजना को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उसके लिए ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्रों के भीतर एवं सीमाओं पर वन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप से संभव हो सके। इस परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा वन क्षेत्र विकसित होने से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, इसके साथ हमारी वन उपज की जरूरतों की भी पूरा किया जा सकेगा। इससे योजना पर किए गए खर्च का लाभ राष्ट्र को प्रचुर मात्रा में मिल सकेगा तथा पर्यावरण भी संतुलन रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। आज का विषय था सामाजिक वानिकी और पर्यावरण। आलेख एवं वाचन हेमंत झा का था। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण।

मित्रों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, तो दोस्तों, आज का हमारा सुविचार है कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना है ज़रूरी। अगर हम ये सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा भोजन और नियमित व्यायाम ही काफ़ी है, तो ये बात पूरी सही नहीं है। सच ये है कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना यानी मानसिक खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खुशी तनाव को कम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और हमें कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है। दूसरी ओर, लगातार चिंता, तनाव और उदासी हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीवन में खुश रहते हैं तो इसका सीधा फायदा आपकी सेहत को मिलता है। और कहा भी गया है कि हैप्पीनेस इज़ अ मेडिसिन। अगर एक बीमार व्यक्ति खुश है तो उसकी बीमारी उसके जीवन पर हावी नहीं हो सकती। इंसान अगर जीवन में खुश रहता है और अपने काम काज के प्रति भी वो प्रसन्न रहता है, तो जीवन के प्रति उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहता है। लेकिन मित्रों, इस भाग दौड़ भरी जीवन शैली में शायद ऐसा लगता है कि अब हम खुश रहना भूल गए हैं। बात सही है कि आजकल हर व्यक्ति पर काम की अधिकता रहती है, काफ़ी जिम्मेदारियां जीवन में रहती हैं, लेकिन अगर हम अपने काम काजों के साथ साथ अपनी जीवन शैली में, अपने व्यवहार में थोड़ा हंसी, थोड़ी सी मौज मस्ती को भी अगर स्थान दे दें, तो इसका ना सिर्फ हमारी सेहत पर सकारात्मक असर होगा बल्कि ज़िंदगी को जीने का आनंद भी आएगा। और खुश रहने के लिए किसी बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं है। हम अपने जीवन में उन छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि कभी ऑफिस में हमारे बॉस द्वारा हमारे काम की तारीफ भी हमको थोड़ी सी खुशी दे देती है, किसी बच्चे की एक प्यारी सी बात, उसकी एक प्यारी सी हंसी भी हमें खुशी दे जाती है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती या गपशप भी हमें खुशी देती है। इसके अलावा हमारे पर्व, हमारे तीज त्यौहार भी हमें खुश रहने का एक मौका देते हैं। हमारे जीवन में खुशी के ऐसे बहुत से पल होते हैं जो हमारे जीवन की नीरसता को दूर करते हैं, और जो पल हमें खुशी दे वही हमारी जिंदगी है।

0: श्रोताओं, अब हम आपको कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं विद्या भारती द्वारा आयोजित 38वीं हॉकी एवं फुटबॉल खेल प्रतियोगिता पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। श्रोताओं, खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, समर्पण और टीम भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देते हैं। आज के दौर में जब बच्चे और युवा तेजी से डिजिटल दुनिया और मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित होते जा रहे हैं, ऐसे समय में खेल के मैदान की ओर बढ़ता हुआ हमारा हर कदम अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रयास है। जब मैदान में हमारे युवा खिलाड़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ उतरते हैं, तो वो दृश्य केवल एक प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिभा, परिश्रम और खेल भावना का एक सुंदर उत्सव बन जाता है। इसी उत्साह और उमंग के वातावरण के बीच विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय मथुरा में 38वीं क्षेत्रीय हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 29 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के उद्घाटन दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर प्रतियोगिता की उद्घोषणा करते हुए आप हैं माननीय कैबिनेट मंत्री चीनी मिल एवं गन्ना विकास विभाग उत्तर प्रदेश चौधरी लक्ष्मी नारायण जी।
1: पहले एक बड़ी गलत धारणा थी, जो बच्चे खेलते हैं वो पढ़ नहीं पाते। मेरा मानना तो यह है कि जो बच्चे खेलते हैं वही पढ़ पाते हैं। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, मन स्वस्थ होगा तभी तो दिमाग स्वस्थ होगा। उत्तर प्रदेश के जो सचिव हैं खेल कूद के, उनके खाते में 65 करोड़ रुपए नंबर एक में वो हैं जो उन्होंने जितने भी स्वर्ण पदक विश्व में जीते हैं सरकार ने दिए हैं, वो 65 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा। डॉक्टर सुहास एलवाई IAS में 3rd स्थान था। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, जो बच्चे खेलते हैं वो खेल में ही लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं। मैं कहता हूँ जितना अच्छा खिलाड़ी होगा वो उतना ही अच्छा सफल छात्र भी होगा। आप लोगों का सौभाग्य है कि राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए ब्रज भूमि में आ गए। जो एक रात ब्रज में रुकता है वो ब्रजवासी हो जाता है, ऐसा राधा रानी का आशीर्वाद। निश्चित रूप से आप सबको भगवान की इस रस की नगरी में आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि जीवन में आपकी सफलता कदम चूमेगी हमेशा। आप सब का यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जीवन में आपको हर कदम कदम पे पढ़ने में

0: खेल में और जीवन चर्या में सफलता मिले। आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विद्या भारती पश्चिम उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 38वीं क्षेत्रीय हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: इस भव्य खेल आयोजन में दूर दूर से आए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हॉकी की तेज रफ्तार और फुटबॉल के रोमांचक मुकाबलों के बीच खेल का मैदान युवाओं के जोश और जुनून से भरा हुआ नजर आया। क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता के इस महाकुंभ में हमने खिलाड़ियों एवं आयोजकों से इस प्रतियोगिता के बारे में बात की और ये जाना कि ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसके क्या मायने हैं। आप हैं विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री डोमेश्वर साहू।
2: खेलकूद भी हमारे यहाँ विद्यालय स्तर पर, संकुल स्तर पर, फिर प्रांत स्तर पर, फिर क्षेत्र और अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन होता है। क्षेत्र जब हम कहते हैं तो हमने अपनी कुछ रचना बना रखी है अलग अलग इसे प्रांत की, जैसे ये पूरे देश भर को 11 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र ऐसा कहा जाता है जिसमें उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं और एक प्रदेश उत्तराखंड, ऐसे मिलाकर के ये 39 जिले हैं। तो ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत, उत्तराखंड, ऐसे तो अलग अलग जो खेल होते हैं 40 प्रकार के खेल अभी हम लोग करते हैं। इनमें से एक जैसे यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है जिसमें हॉकी और फुटबॉल है, तो ये टीम सीधे सीधे तीनों प्रांत से जो टीम आई हुई है इनकी ये प्रतिस्पर्धा यहाँ पर चल रही है। इसके बाद ये लोग अखिल भारतीय खेलकूद में जाएंगे, फिर विद्या भारती खेलने के बाद और यहाँ से हम जो पूरे देश में एक SGFI जो पूरे स्कूली जो विद्यार्थी हैं इनके खेलकूद का आयोजन करने की एक संस्था है जिसको SGFI कहते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर उसमें जाकर के खेलेंगे क्योंकि विद्या भारती को उन्होंने एक स्टेट यूनिट का दर्जा दिया हुआ है। अखिल भारती जब करते हैं SGFI तब उसमें हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय स्तर पर निकले हुए जो विद्यार्थी हैं वो लोग वहाँ पर जाकर के सम्मिलित होते हैं। तो एक प्रकार से ये चरणबद्ध प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं।
1: छात्रों के जीवन में इस तरह की प्रतियोगिताओं को और खेल कूद को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: एक तो व्यक्तिगत विकास भी है इसमें और सामूहिकता का भी विकास है इसमें। व्यक्तिगत विकास, उनकी स्टेमिना बढ़ती है, साहस का निर्माण होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और निर्णय लेने की क्षमता इसमें विकसित होती है। आप देखेंगे कि खेलकूद के माध्यम से लोगों को नौकरियां मिल रही है, एक रोजगार का भी एक साधन बन रहा है।
1: इसी के साथ इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए आप हैं उप प्रधानाचार्य एवं सह खेल संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र श्री प्रेम शंकर जी।
3: 38वीं हॉकी फुटबॉल प्रतियोगिता 29 तारीख से 1 तारीख तक सम्पन्न होनी है। इस टूर्नामेंट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड, मेरठ प्रांत और ब्रज प्रांत की टीमें भाग ले रही हैं। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीन एज ग्रुप SGFI यानी स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्कूल लेवल का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, इसके बाद वर्ल्ड स्कूल चलता है, ये टीमें वहां जाके सहभागिता करेंगी। अभी हॉकी में 5 टीमें बहनों की हैं और 12 टीमें बॉयज़ की हैं। इसी तरीके से फुटबॉल में भी 12 टीमें बॉयज़ की हैं और 8 टीमें गर्ल्स की हैं। इस तरीके से टोटल संख्या यहाँ जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो 415 के करीबन का है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो टीमें जीतेंगी, वो हमारे विद्या भारती अखिल भारतीय प्रतियोगिता जो अजमेर राजस्थान में होने वाली हैं 8 तारीख से, उसमें सहभागिता करेंगी और इसके बाद जो टीमें वहाँ जीतेंगी वो SGFI में सहभागिता करती है। मथुरा की नगरी ने हॉकी के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मथुरा का गौरव है।
1: तो इस तरह के खेलों में तकनीकी प्रशिक्षण का और फिटनेस का क्या स्थान रहता है, ये कितना जरूरी है?
3: बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। वास्तव में मथुरा हॉकी के क्षेत्र में जो मैंने बताया था, जितना प्रयास कर रहा है हमारे जो फेडरेशन है उनके सेक्रेटरी शैलेश मिश्रा जी हैं, वो काफ़ी अच्छे, कई बार हम यहाँ टूर्नामेंट कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि हॉकी

0: बहुत फास्ट हो गई है टेक्निकल दृष्टि से। उसके लिए टर्फ बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के जितने भी मैच हैं वो सारे ये बच्चे जो टर्फ पे खेलने वाले हैं, और ग्रास पे खेलने की टेक्निक अलग होती है और टर्फ पे खेलने की अलग टेक्निक होती है, इसलिए कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है आगे टर्फ पे खेलना। एक तो ये टेक्निकल दृष्टि से, दूसरी चीज यहाँ बहुत अच्छा कोई टर्फ मैदान हमें मथुरा में नहीं अवेलेबल है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी एक मथुरा में कोई टर्फ बन जाए तो ये जिस तरीके की प्रतिभाएं मथुरा दे रहा है वो और आगे बढ़ सकती हैं। और टेक्निकल कोचेज की बात है, बहुत अच्छे कोचेज मथुरा में भी अवेलेबल नहीं है, जिस स्तर का टूर्नामेंट बच्चे खेल रहे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ से जाने के बाद में सारे बच्चे कोई दिल्ली खेल रहा है, कोई ग्वालियर खेल रहा है, कोई और कहीं जा रहा है, तो कुल मिला के मथुरा से वो निकल के ही अपनी परफॉर्मेंस आगे सुधार पा रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि मथुरा में भी ये सुविधाएं उत्पन्न हो जाए।
1: अगर हम हॉकी खेल की बात करें तो इसमें भारत की क्या स्थिति है और भारत के प्रतिनिधित्व को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, भारत बहुत अच्छा हॉकी में परफॉर्मेंस रहती है, 8 बार का गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक में भारत, और एक जमाना ऐसा था कि भारत के खेल को देखने के लिए सैकड़ों दर्शक उमड़ पड़ते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो दरअसल में मेहनत का खेल खेलना कम पसंद करती है, और फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, ये सारे मेहनत के खेल हैं। और जिस तरीके का हॉकी में इंडिया का नाम है, क्योंकि 8 बार की गोल्ड मेडल अगर इंडिया ने लिया है तो कुछ ना कुछ किसी वेस पे लिया होगा, और इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छा नाम है, तो मेरा यही कहना है कि भविष्य बहुत अच्छा है बच्चों का, लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो सुधार करना चाहिए।
1: और इसी के साथ हमारे संग अब जो बालिका खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं, और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, और अभी हमारे साथ जो नोएडा की विनिंग टीम है वो हमारे साथ हैं। बात करते हैं इस टीम की कैप्टन से।
2: मेरा नाम पिंकी है, और हम लोगों ने इस जीत के लिए बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की गलतियों को समझा, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया, साथ में खेले, और हमारी कोच ने हमारा साथ दिया, हमें टाइम टू टाइम गाइड किया, उन्होंने हमारे साथ रही, हमारा प्रोत्साहन किया, और जिसका रिजल्ट आज है हम जीत चुके हैं और अब हम नेशनल जाएंगे। अभी हमारा रतनलाल फूल कटोरी से हुआ मैच, टीम बहुत अच्छी थी हमारे साथ, उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्पीट किया, एकदम लेवल की टीम थी और रिस्पेक्टफुली खेला उन्होंने, हमने भी रिस्पेक्टफुली खेला, हम उनसे 3-0 से जीते, उनका गेम बहुत बेटर था, हमारा भी बेटर था, अब हम नेशनल जाएंगे।
1: और हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, नाम बताएं अपना।
3: अनन्या।
1: क्या एक्सपीरियंस रहा आपका?
3: हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हम लोगों ने जिस तरह से खेला हम उससे अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और नेशनल जीत कर आएंगे।
1: आपको देखकर लग रहा है काफी मेहनत करी है आपने, और इतनी देर से ग्राउंड में आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो ये तो बात निश्चित है कि हॉकी जो है काफी ताकत का गेम, स्टेमिना का गेम है।
3: यस,
1: तो किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं, इतनी भाग दौड़ करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या रहती है इस खेल को लेकर?
3: सर, हम सुबह 6:30 बजे आते हैं, और उसके बाद हम अपने स्किल्स करते हैं, रनिंग करते हैं, और अपने स्टेमिना को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमारी मैम, हमारी कोच रागनी मैम हमारी बहुत हेल्प करती है।
1: कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई लिखाई पर इस गेम का कुछ असर होता हो?
3: नहीं सर, कभी नहीं, हम सब अपनी क्लास में बहुत अच्छे हैं।
1: और हमारे साथ यहाँ इस खेल की जो कोच है नोएडा टीम की, मैम शुभ नाम बताएं।
4: रागनी चौधरी, मैं भावराव देवरस नोएडा से हूँ, ये मेरठ प्रांत में टीम आती है, तो हमारी अंडर 14 बॉयज की टीम भी आई हुई है, और ये अंडर 17 गर्ल्स की टीम है। उससे पहले बॉयज़ का मैच हुआ था, तो उनका उत्तराखंड जो प्रांत था उसके साथ मैच हुआ था, तो हमारे बच्चों ने क्या किया, 3 गोल से वो जीते हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा। दूसरी बात है, हमारे बच्चों अंडर 17 के जो बच्चे खेले थे उनका रतनलाल जो कि ब्रज प्रांत में आता है उससे मैच हुआ था, तो हमारे बच्चे 3 गोल से जीते हैं, और अब ये नेक्स्ट, क्योंकि 2 ही टीम थी, अब ये नेक्स्ट अजमेर खेलने जाएंगे जो अखिल भारतीय स्तर का गेम है, तो कोशिश करेंगे हमारे बच्चे और इनका पूरा मतलब यहाँ से मोटिवेट होके जा रहे हैं कि मुझे और वहाँ कितना अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि मैं अपना आगे चल के SGFI में अपना प्लेस बना सकूँ। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सभी से, मेरा मैसेज सबको जाना चाहिए स्कूल में कि बच्चों को एक टाइम पीरियड देना चाहिए, जैसे हम पीरियड उसके लिए देते हैं कि भाई स्टडी के लिए आपका ये इसी तरीके से इनको बिना किसी रोक टेक के अगर आप टाइम पीरियड देंगे तो ये और अच्छी परफॉर्मेंस करके और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे विद्या भारती में एक टाइम पीरियड होता है कि असेंबली टाइम, जब सभी बच्चे असेंबली करते हैं उसी टाइम ही ये प्रैक्टिस करते हैं, अदर टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब फ्री माइंड खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं होगा तो और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बच्चे हमारे एसजी भाई तक पहुँच सकते हैं। अब मैं अंदाजा लगा रही हूँ यहाँ से नेशनल जाएंगे और वहाँ प्लेस बनाएंगे, फिर वहाँ से तब जाएंगे। अब ऐसे

0: है कि नहीं हमारे बच्चे तो SGFI तक जाएंगे ही जाएंगे, अब इतना ये मोटिवेट हो चुके हैं कि नहीं हमें जगह बनाकर ही रहना है, क्योंकि पिछली बार SGFI तक नहीं जा पाए थे और हमारी इनके साथ बहुत आशीर्वाद और दुआएं हैं कि हमारे बच्चे आगे तक जाएं।
1: आज हम देख रहे हैं कि इतनी कड़ी प्रतियोगिता रहती है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। अगर हम खेलों की ही बात करें तो एक अच्छे लेवल पर पहुँचने के लिए खिलाड़ियों को किस तरह की सुविधाओं का मिलना आवश्यक है?
0: देखो भाई, सब सुविधाओं के साथ साथ बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, ये पौष्टिक आहार नहीं लेगा, तो फिर बच्चा कहाँ से इन सारी एक्टिविटीज को कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी पाने के लिए बच्चों को अच्छा आहार लेने की आवश्यकता है। अगर सबका सहयोग रहेगा, अच्छी से इनको फैसिलिटीज मिलेंगी, टाइम पीरियड अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात है, जो सब्जेक्ट टीचर का प्रेशर रहता है वो नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर को ये सोचना चाहिए जैसे कि एक सब्जेक्ट महत्व रखता है वैसे इनका खेल कूद भी, क्योंकि अगर ये खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो ये फिजिकल फिट नहीं रहेंगे, फिजिकल फिट नहीं रहेंगे तो अदर सब्जेक्ट को कैसे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बच्चा सुबह से शाम तक 9 पीरियड नहीं पढ़ सकता है, 8 पीरियड नहीं पढ़ सकता है, लेकिन वो 9 घंटे तक खेल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कि लगातार जो पढ़ता है और उससे को गेम्स का पीरियड और वो इतना उत्साहित हो जाता है खेलने के लिए, तो यही उत्साह पढ़ने के लिए भी होना चाहिए, लेकिन वो जब ही होगा जब बच्चों को पर्याप्त खेल के लिए भी सभी के सहयोग से समय।
1: श्रोताओं, हम उस स्थान पर मौजूद हैं जहां फुटबॉल की क्षेत्रीय प्रतियोगिता चल रही है और यहां विभिन्न टीमें इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आई हैं, और हमारे साथ हैं इस प्रतियोगिता के प्रभारी श्री नवीन रावत जी। वो हम बात करते हैं उनसे इस प्रतियोगिता को लेकर। ये जो फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है इसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: यह है हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की विद्या भारती की जो क्षेत्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है वो आयोजित की जा रही है। इसमें करीब 17 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं जो अलग अलग ग्रुप में है, U19, U17 और U14 ग्रुप में। तो यहाँ से अपने ग्रुप में जो टीम विनर होगी वो यहाँ से अखिल भारतीय जो अपना विद्या भारती का नेशनल होगा जो कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी।
1: तो इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं ये कहाँ तक ले जाती हैं किसी भी खिलाड़ी को?
2: बस ये आप ये समझिए कि जो स्कूल्स के गेम्स होते हैं उसमें हम यहाँ से टीम अपने नेशनल के लिए यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और वो टीम SGFI में पार्टिसिपेट करती है। SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और ये SGFI जो है वो सभी स्कूल्स को, चाहे वो हम CBSE के स्कूल्स लें चाहे हम स्टेट यूनिट्स लें, उनको एक यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो ऐसी हमारी विद्या भारती भी एक यूनिट है, तो यहाँ से कि हमारी जो नेशनल टीम है वो भी SGFI जाती है और जगह से CBSE वो भी उनका भी सेंटर जो नेशनल होता है वो SGFI होता है। तो यहाँ से भी जो विनर टीम होगी वो अपना नेशनल खेलने के बाद SGFI में पार्टिसिपेट करेगी, और वहाँ पर जो विनर टीम होती है वो स्कूल के जो एशियन गेम्स वगैरह होते हैं, स्कूल एशियन गेम्स, वर्ल्ड स्कूल गेम्स, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
1: अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल अधिकांशतः विश्व स्तर पर खेले जाने वाला खेल है। भारत की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? भारत का जो प्रतिनिधित्व है फुटबॉल में उसको लेकर क्या कहेंगे?
2: हम ये कह सकते हैं कि बाकी कुछ जो और अधिक खेल हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा जो टीम्स को रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन जो बाकी हमारे गेम हैं जैसे इसमें फुटबॉल भी है, यहाँ पर थोड़ा सा एक कंडीशन हो जाती है कि थोड़ा इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता टीम को, जबकि कुछ कंडीशंस भी होती हैं जैसे हमारे प्रदेश की जो एनवायरनमेंट है और हमारा फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है इस पर भी डिपेंड करता है कि कई बार ऐसी कंडीशन होती हैं कि जो वहाँ के जो भारत जो टीम्स होती हैं वो अच्छा अपना रिजल्ट देती हैं, हमारे यहाँ से नहीं इतना हो पाता। लेकिन यह है कि अब हमारा स्तर काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, जिसमें अभी आपने देखा होगा पिछले नेशनल जो हमारे प्लेयर्स थे काफ़ी अच्छा उन्होंने रिजल्ट दिया है, तो टीम अभी बढ़ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है टीम का।
1: खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फुटबॉल खेल रहे हैं?
2: खिलाड़ी के तो हम ये कहेंगे भाई अपनी मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट दें, जहाँ भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है बच्चों को खेलने का वो वहाँ से पार्टिसिपेट करना करें, एकेडमी ज्वाइन करें, प्रैक्टिस करें, तो अच्छा रिजल्ट रहेगा आगे।
1: और अब हमारे साथ फुटबॉल के कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए हुए हैं, नाम बताएं अपना।
3: सर, मेरा नाम शिवम चौधरी है।
1: क्षेत्रीय प्रतियोगिता हो रही है, इसको लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है?
3: सर, तैयारी चल रही है अभी, हौसला है सर, जीत के जाएंगे, अभी नेशनल भी खेलना है, फिर उसके बाद SGFI, उसके बाद और आगे इंटरनेशनल भी खेलेंगे।
1: इस प्रतियोगिता से पहले और कहाँ कहाँ आपने गेम खेले और कितनी प्रतियोगिताएं इसमें जीती हैं?
3: प्रतियोगिता सर इसमें तो मैं हर साल रहा हूँ, U14, U17 और U19 में हूँ, और यहाँ पे एक यूथ अकेडमी है और वहाँ से भी खेलने।
1: और एक और खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है, नाम बताएं अपना।
4: चेतन लोर।
1: इससे पहले कितनी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया है?
4: इससे पहले हमने इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता आखिरी साल, और हमारी तैयारी 2 महीने से शुरू हो गई थी, और आज हमने पहला मैच खेला, हमने पहला मैच अभी जीत भी लिया, टू

0: हीरो था स्कोर। तैयारी बहुत पहले से चल रही है, 2-3 साल से लगातार आ रही है यहाँ पे।
1: वो आगे क्या सोचा है फुटबॉल को लेकर आपने?
0: आगे जाना है नेशनल लेवल पे, SGFI में भी जाना है।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमने SGFI में प्रतिभाग कर चुके कुछ खिलाड़ियों से भी बात की।
1: हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्ञेश, जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और SGFI में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अपने गेम के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने शुरुआत करी और क्या आपका इसमें अनुभव रहा?
3: ज़्यादा तो नहीं, पर 2-3 साल पहले भी गेम को स्टार्ट किया है। जैसा कि पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, पर जैसे स्कूल में जो स्पिरिट दिखी हॉकी की, जो आगे तक जाते हैं, तो उसको देख के फिर हॉकी स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्किल्स और उस पर थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद अभी लास्ट ईयर मैं SGFI खेल के आया हूँ। उससे मतलब एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे आके मतलब एक गेम के बारे में पूरा पता चलता है कि मतलब क्या गेम वगैरह है। अब थोड़ा गेम में कंसिस्टेंसी आ चुकी है, जो गेम इम्प्रूवमेंट आया है वो अभी सही है पहले से।
1: हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, नाम बताएं अपना।
4: निशान।
1: तो आप भी हॉकी के खिलाड़ी हैं
4: जी।
1: हॉकी गेम को आप किस तरह से देखते हैं और अपना एक्सपीरियंस इसमें बताइए कि SGFI तक आप कैसे पहुंचे?
4: मेरे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तब मैं इस स्कूल में आया था, देखा कि स्पोर्ट्स का एक अच्छा कल्चर है इधर, तो उस टाइम हॉकी का भी काफ़ी क्रेज़ था। तो मैंने स्टार्टिंग हॉकी सेलेक्ट किया खेलने के लिए, क्योंकि अंदर एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट भी है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला हॉकी से, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस जर्नी से अब तक।
1: तो अभी हॉकी में ही आगे जाना चाहते हैं या किसी और गेम के बारे में सोचा है?
4: हॉकी में ही आगे जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी तक, और उसके आगे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर खेलेंगे, ज़रूर कंटिन्यू करेंगे आगे तक।
1: एक और खिलाड़ी मौजूद है, नाम बताएं अपना।
5: रोहित चौधरी। मैंने हॉकी खेलना सन 2023 में चालू करा था। मेरे को इतना कुछ वो नहीं था एक्सपीरियंस, मेरे सीनियर्स ने बड़ा सपोर्ट करा मेरे को। और हॉकी खेलने का जो मेरे को आइडिया मिला वो मेरी फैमिली से ही मिला था। मेरे चाचा जी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हॉकी खेलते थे, तो उस टाइम मेरे को पहले से ही था कि हाँ हॉकी खेलनी है, चाचा जी खेलते हैं, हम ट्राई करेंगे। तो स्कूल में देखा टूर्नामेंट वगैरह बढ़िया लेवल पे होते हैं, स्कूल में बढ़िया वो मिलती है आपको, फेडरेशन मिलती है। स्टार्ट करा उस टाइम पर डिफिकल्टी हुई थी, सीनियर्स ने सपोर्ट करा कुछ, कभी डिमोटिवेशन भी होता था कि नहीं यार पासिस नहीं आते, कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर जब खेलना चालू करा भी धीरे धीरे, स्टार्ट स्टेट खेला, नेशनल खेला, अभी पिछले साल SGFI लगा था, उस टाइम सर ने बड़ा वो कॉन्फिडेंस दिया था, एक मोटिवेशन टाइप आया था अंदर से।
1: और हमारे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद है, नाम बताएं अपना।
6: सक्षम।
1: क्या गेम है आपका?
6: हॉकी।
1: तो SGFI खेल चुके हैं आप?
6: यस सर, 3 टाइम्स।
1: 3 टाइम्स आपने SGFI खेला है, तो अपने एक्सपीरियंस को लेकर आप क्या कहेंगे?
6: एक्सपीरियंस को लेकर हम ये कहेंगे कि स्कूल की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला था। SGFI में एक अलग ही माहौल मिलता है, जो हमें यहाँ पे स्टेट में और नेशनल में मिलता है वो उससे बहुत ही अलग डिफरेंट माहौल मिल जाता है हमें। SGFI में कुछ ज़्यादा ही हमें सीखने के लिए मिलता है वहाँ पे, अच्छा बहुत स्किल पे काम करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए मोटिवेट होते हैं वहाँ से कि हम अगले साल और ज़्यादा आना है। हर साल आते हैं हम, पिछले साल 14 में गए थे, अंडर 14 में खेले थे स्टार्टिंग में, उसके बाद हमारी इंप्रूवमेंट बढ़ी तो अंडर 19 में हमें शिफ्ट कर दिया गया 14 की 17 की जगह। 19 में 2 साल हम खेलने के बाद SGFI 2 बार जा चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे जो हम प्लेयरों को देखते हैं, उनकी स्किल्स देखते हैं, उनका टीम वर्क देखते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस से स्किल्स से सीखते हैं उनका, फिर हाँ अगले साल जब वहाँ पे आपके हम खेल के आते हैं तो यहाँ पे हम उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं।
1: एक और खिलाड़ी मौजूद हैं, कुश्ती में SGFI में प्रतिभाग किया है, तो नाम बताएं अपना।
7: मेरा नाम गौरव कसाना है। इस स्कूल में 8th क्लास में आया था, तब भैया लोग प्रैक्टिस करते थे कुश्ती की, तो सीनियर्स को देख कर मैं मोटिवेट हुआ, सर ने भी मुझे सपोर्ट किया। 8th क्लास में स्टेट खेलने गया तो मेरा कोई मेडल नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने कड़ी मेहनत करी भैया के साथ। 9th में मेरा स्टेट और फिर विद्या भारती हुआ। इस वर्ष मैंने 10th में SGFI गया, उसमें मेरी 8th रैंक पड़ी थी।
1: हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप इसी तरह से खेलों में आगे बढ़ते रहें और अपने भारत का नाम, राष्ट्र का नाम इसी प्रकार रोशन करते रहें।
7: थैंक यू सर।
2: और साथियों, इसी के साथ अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज की खबरों में है कि अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। SSP के निर्देश पर पुलिस टीम अपराधियों के घर घर पहुंचकर दस्तक दे रही है। DGP की ड्रीम प्रोजेक्ट यक्ष ऐप के तहत सभी चिन्हित अपराधियों की फोटो, वर्तमान स्थिति और गतिविधियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड की जा रही है। और इसी के साथ एक और खबर है, मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की तस्वीरें बदलने जा रही है। शासन ने सड़कों के जीर्णोद्धार समेत 90 विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। और आप बात कर लें आज के दिन विशेष की, तो आज की तिथि 31 अगस्त इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1956 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी थी। और आज ही के दिन सन 1968 में भारत के पहले 2 चरणीय साउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV1 का सफल प्रक्षेपण किया गया।

0: तो मित्रों, इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में आपके समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म मुजरिम से, आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और साथियों की, रचना है इंदिवर की और संगीत से संवारा है इस गीत को अनु मलिक ने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाडेकर को। फिल्म का नाम था नकाब। शब्द रचना फारूक कैसर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था कमाल मखदूम ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गैम्बलर से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द रचना नीरज की है और इस दिन को संगीत से संवारा है SD बर्मन ने।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गीत गाता चल से। आवाजें हैं हेमलता, चेतन, जसवाल सिंह। शब्द रचना रविंद्र जैन की है और इस गीत को संगीत से भी संवारा है रविंद्र जैन ने।

फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था घर। शब्द रचना गुलजार की थी और इस गीत को धुन से संवारा था आरडी बर्मन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गुलामी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सबीर कुमार को। फिल्म का नाम था गुलामी। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और इस गीत को धुन से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की युगल आवाजें हैं। फिल्म का नाम है हमारा खानदान। शब्द रचना फारूक कैसर की है और इस गीत को धुन से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था हकीकत। इस गीत को लिखा था अनवर ने और इस गीत को संगीत से संवारा था दिलीप सेन, समीर सेन ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म हस्ती से। आवाज़ें हैं साधना सरगम, कुमार सानू और मुकुल की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं रेडियो श्रोता ज्ञान सिंह बोल रहा हूँ उस बात से।
0: जी ज्ञान सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: और साहब ठीक है? परिवार हमारा सब रेडियो परिवार।
0: सब अच्छे हैं सर, आप भी ठीक होंगे? जी
1: हाँ साहब, आपकी दुआ से ठीक ही है। हाँ
0: जी कार्यक्रम हमारा लगातार सुन रहे हैं।
1: साहब, सुन रहे हैं।
0: आज क्या पसंद रहेगी कार्यक्रम में सर, बताइए।
1: पहले तो मेरे को लिए मैं शुभकामना देता हूँ रक्षाबंधन की। महेंद्र सिंह हैं, यागराम जी हैं, प्रजापत जी हैं, सबके लिए मेरी जो है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: सर,
1: आपके लिए भी शुभकामनाएं हों रक्षाबंधन की। तो
0: आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर।
1: आज का गाना मेरा जो है धर्म कर्म का है।
0: जी
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
0: ज्ञान सिंह जी, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।
1: ठीक
0: बहुत
1: है साहब,
0: बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रबान जी, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: सबसे पहले सर, रक्षाबंधन की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी बहुत सारी बधाइयां सर हमारी तरफ से।
1: और आज मैं अपने पसंद का गीत बता देता हूँ सर। फिल्म का नाम है अनपढ़ और गीत के बोले रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, गायिका लता मंगेशकर। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जानकारी।
0: इंद्रभान जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्कार
1: सर मैं गांव उस पार से ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र वीरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: वीरेन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: सर आपको और हमारे आकाशवाणी परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सर, हमारी तरफ से ब्रिज रेडियो श्रोताओं की तरफ से सर।
0: आपको भी, आपके श्रोता मित्रों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ रक्षाबंधन पर्व की।
1: और सर अच्छे हो
0: हाँ, बहुत अच्छे हैं। आप बताएं कैसे हैं।
1: सर? बढ़िया है, थोड़ी तकलीफ हो गई थी इसीलिए सर थोड़ा बीमार है तो घर पे थे। थोड़ा सर डॉक्टर साहब ने रेस्ट बताया है, क्या करें, थोड़ा बीमार थे सर।
0: अपने

0: स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ अच्छा है।
1: जी सर, जी सर, जी सर। सर हमें गाना सुनवा दीजिए।
0: जी कौन सा?
1: हम बहनों के लिए मेरे भैया आता एक दिन साल में, ये वाला गाना है सर। सर हमारे दोस्तों से बात कर लीजिए जरा।
0: बात कराइए।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
0: कौन बोल रहे हैं आप?
2: सर मेरा रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ सर। और सर आप कैसे हो? हमारी आकाशवाणी टीम कैसी सर? हमारी तरफ से रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सर।
0: यादराम जी, आपका भी स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व की। आपके और वीरेंद्र जी की फरमाइश पर सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: आदरणीय सारस्वत जी को सादर सप्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर?
1: सर, मैं आपका जाना पहचाना वही पुराना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लबानिया खंदौली से बोल रहा हूँ। सारस्वत जी,
0: लवानिया जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सारस्वत जी, कैसे हैं आप और हमारी हेलो आकाशवाणी टीम?
0: बहुत अच्छे हैं सब लोग, दुआएं हैं आप लोगों की।
1: जी सर, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खासकर हम भाई बहनों के लिए। और
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: रक्षाबंधन का पावन पर्व है और अब तो धीरे धीरे त्योहारों का सिलसिला शुरू होना है, क्योंकि अब जन्माष्टमी भी नजदीक ही है, आगामी 4 सितंबर की।
0: जी, बिल्कुल।
1: हम सबकी तरफ से आकाशवाणी मथुरा परिवार को, सभी श्रोताओं को आगामी सभी त्योहारों की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी त्योहार मंगलमय हों, सुखद हों, सरल हों, सफल हों।
0: जी, हमारी तरफ से भी लवानिया जी, आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी पर्वों की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी। आज आपसे गुजारिश करेंगे, फिल्म का नाम है केदारनाथ।
0: जी
1: इसमें एक गाना है, नमो नमोली शंकरा भोलेनाथ शंकरा।
0: जी जी सुनवाते हैं लवानिया साहब, आपकी पसंद का ये गाना। शुक्रिया आपका बहुत सारा।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी, हमारा कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत यादों के झरोखे से।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के सुर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

भूत बंगला। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे मन्ना डे के। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। इस गीत को स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने।

अभी आपने सुना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत, स्वर थे लता मंगेशकर के। और आइए अब सुनते हैं जब जब फूल खिले फिल्म में मोहम्मद रफी को।

नील कमल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, स्वर थे मोहम्मद रफ़ी के। और आइए फिल्म ताजमहल में सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को।

ताजमहल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, सपने देखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सपनों को सच करने का हौसला हर किसी में नहीं होता। और सपनों की बात, हौसलों की बात आज हम इस कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, आज का कार्यक्रम गीत, बात और एसएमएस का सफर थोड़ा अधूरा है। अधूरा इसलिए श्रोताओं की, क्योंकि आज आपके एसएमएस हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी तकनीकी कारण की वजह से आज आपके एसएमएस हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। तो आज गीत भी होंगे, बातें भी होंगी, लेकिन बस आपके एसएमएस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मैं आपसे बात कर रही थी सपनों की, तो

हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, और उनका कहना था और उनके इस विचार से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। और जब हमें सपने सोने नहीं देते तो वो बार बार बस यही कहते हैं कि चलो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उम्र कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर दिल में उम्मीद और कदमों में हौसला है तो मंजिल तक पहुंचना संभव है।

जी हाँ दोस्तों, कभी रास्ते आसान नहीं होते और कभी कभी तो लोग भी हमारा मजाक उड़ाते हैं और कभी हमारी कोशिशें असफल भी होती हैं। लेकिन याद रखिए, असफलता सपनों का अंत नहीं बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से पूरा करने का एक सबक है। और जब दुनिया कहे तुमसे नहीं होगा, तब अपने दिल से कहना चाहिए, एक बार कोशिश करके तो देखूं।

जी हाँ दोस्तों, हमारे सपनों और हमारे हौसलों को बुलंद रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे सपने जिन्हें हम यथार्थ में बदलना चाहते हैं उनके लिए हमारे इरादे भी मजबूत होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें डीमोटिवेट करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अरे नहीं, बहुत मुश्किल काम है, तुम कैसे करोगे। क्योंकि सपने तो देखिए हर किसी का हक है, सपने देखने का। किसी को एक बहुत खूबसूरत सा, एक सुंदर सा घर बनाना है, किसी को बहुत अच्छी नौकरी की चाह है, और किसी को चाह है कि मेरा जो व्यापार है बहुत अच्छे से वो एस्टेब्लिश हो जाए। और हमारे युवा पीढ़ी भी कई बार बहुत सारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी करती है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती है कि मुझे ये बनना है अपनी लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं कि हमारा पहला ही प्रयास सफल हो जाए। हो सकता है कहीं हम थोड़ी बहुत चूक जाएं, कुछ प्रतिशत नंबर से, कुछ प्रतिशत और किन्हीं समस्याओं से। तो बस उस समय काम यही होना चाहिए कि जो वो टूट कर बिखरने की स्थिति है वो कुछ क्षण की हो, कुछ पल

की हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिखर जाएं। बिखरने से सब कुछ बिखर जाएगा, लेकिन अगर आपने खुद को होल्ड किया हुआ है, आपने खुद को संभाला हुआ है, तो आपके सपने आज नहीं तो कल सच होकर रहेंगे। तो ऐसे ही समय में जब आपको कहीं से निराशा भी मिली, कहीं से आप हताश भी हुए, तो भी आपको टूटकर बिखरना नहीं है,

कितनी खूबसूरत बात है ना, जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है। हम कल जो नहीं कर पाए उसे आज किया जा सकता है, और आज जो नहीं मिला उसके लिए कल फिर से कोशिश की जा सकती है। इसलिए अपनी उम्र को अपनी सीमा मत बनाइए, अपने हालात को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है बड़ी मंजिलें अक्सर उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जिन्होंने मुश्किल रास्तों पर चलने का साहस किया। हौसला रखिए, देर हो सकती है लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सपनों की और हौसलों की। पर पता है, बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। उनका मानना है कि हमारे तो कोई सपने ही नहीं हैं। एक

नीरसता का भाव उनके जीवन में बना रहता है। बस उनकी नियमित दिनचर्या जो भी है वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। उन्हें आगे बढ़ने की कोई ललक नहीं होती, उन्हें कुछ पाने की चाह नहीं है। और देखिए, ज़िंदगी जीने का मज़ा तभी आता है कि जब आपकी कुछ सपने हो, एक ट्रैक पर चलने में तभी मज़ा आता है जब आपको पता हो कि हाँ, वहाँ मेरी मंजिल है और मुझे अपनी गाड़ी को वहाँ तक लेकर जाना है। तो सपने बहुत ज़रूरी होते हैं देखने के, क्योंकि बिना सपनों के तो ज़िंदगी में नीरसता ही बनी रहेगी। जब आप कुछ नए सिरे से, नए तरीके से नहीं सोचेंगे कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का, और कई बार उम्र भी लोग उसका भी एक एक्सक्यूज़ दिया करते हैं, यारे अब कहाँ, हमारी उम्र ये हो गई, अब तो अब हमें कुछ नहीं करना। बस ये सब चीज़ें बच्चों के लिए होती हैं, युवाओं के लिए होती हैं। हम अब ठीक है, अपना बस जो भी है चल रहा है वो उसमें ही हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट रहिए, क्योंकि संतुष्टि का भाव तो जीवन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, जो उम्र आपकी है उस उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ सोचिए, लेकिन कुछ ना कुछ सोचते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, क्योंकि ये रचनात्मकता, ये कलात्मकता आपको कभी बोरियत, जो एक शब्द होता है ना, नीरसता, वो कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। और जब नीरसता ज़िंदगी में नहीं हो, तब सब और आनंद होता है, प्रेम होता है, और आपको ज़िंदगी में ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। तो भाई, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके दिल में भी कोई सपना है तो उसे सिर्फ सपना बनाकर मत रखिए। आज एक छोटा सा कदम उठाइए, क्योंकि कई बार जब हम मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पहला कदम अक्सर हमारा छोटा ही होता है। और लोग क्या कहेंगे ये सोचकर भी अपने सपनों को मत छोड़िए, क्योंकि अंत में लोग आपकी कहानी सुनेंगे, लेकिन उस कहानी को जीना आपको है। तो मुस्कुराइए, हिम्मत रखिए और अपने सपनों से कहिए, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ तुम्हें हकीकत बनाने। सपनों को पंख नहीं, हौसले चाहिए, और हौसले वाले जो लोग होते हैं ना, वो आसमान भी छू लेते हैं। तो तब तक अपने सपनों को संभाल कर रखिए और हौसलों को हमेशा जिंदा रखिए। मैं आपसे मिलने फिर से आऊंगी, यानी आरजे रश्मि की मुलाकात फिर से होगी इसी कार्यक्रम में, यानी गीत, बात और एसएमएस में। लेकिन अभी आपके लिए एक प्यारा सा गीत प्ले कर रही हूं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस। आज का कार्यक्रम का विषय था सपने और हौसले। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगदीश प्रसाद के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत। आपके साथ संगत कलाकार हैं बांसुरी पर श्री लक्ष्मण दुर्लभ, हारमोनियम संगत श्री चंद्रेश गोयल की है, ढोलक संगत अजय शर्मा की और पर्कशन पर हैं राहुल पाराशर।

इस समय आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत, कलाकार हैं जगदीश प्रसाद। अगला लोकगीत सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: किधर है?
1: बेटे का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
2: ऐसे अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
3: RBI कहता है
4: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।

0: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
1: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

वे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगदीश प्रसाद के स्वर में कुछ ब्रज लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजलोकगीत, कलाकार थे जगदीश प्रसाद। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रजलोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम राउंड के साथ वार्ता की। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा।

0: कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्र

0: उन लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। फैशन उद्योग में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर राष्ट्रपति ने कहा कि समारोह में शामिल करीब 4000 विद्यार्थियों में लगभग 85% महिलाएं हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ और जल भराव वाले क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने दवा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अधिक विविध, संतुलित और सतत व्यापारिक साझेदारी विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 8वीं बैठक हुई। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ काम कर रहा था। निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,066 पर, जबकि सेंसेक्स 271 अंक गिरकर 76,993 पर काम कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर बहने सुनेंगी कार्यक्रम वनिता लोक। चर्चा के विषय रहेंगे आंख है तो जहान है, साथ ही चर्चा की जाएगी आपके लाडले के टिफिन के संदर्भ में। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता भाद्र मास के तीज त्योहार और उनका सामाजिक महत्व। वार्ताकार होंगी अंजलि गंधी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा दिन में 1:45 पर। दिन में 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कार्यक्रम युववाणी के साथ। इस कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत चर्चा के विषय रहेंगे नेत्रदान महादान एवं राज्य एवं केंद्रीय सेनाओं में भर्ती।

ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में सुनिएगा ब्रज वार्ता। ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर लक्ष्मी गौतम। समय संध्या 6:15 पर। भक्ति पर एक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 6:30 पर। कार्यक्रम रहेगा संध्या वंदन।

संध्या 7:31 पर सुनिएगा व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे रात्रि 8 बजे और रात्रि 9:30 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:30। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम सुनेगा रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा रास राधा महादेव लीला। आलेख होगा गोवर्धन दास शर्मा का, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा विदुषी कंगना का ख्याल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दीजिए सुनिए देशगान।

संध्या 6:50 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा धान की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन। कार्यक्रम में चर्चा का दूसरा विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं के चारे की व्यवस्था।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त की ये रचना, स्वर थे शांति माथुर के। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुनेंगी कार्यक्रम वनितालोक। आज का कार्यक्रम लेकर आपके साथ हैं प्रियंका खंडेलवाल।

वनिता लोक सुनने वाली सभी बहनों को प्रियंका खंडेलवाल का नमस्कार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ। आंखों से ही सजता है दुनिया का हर रंग, आंखों से ही सजता है दुनिया का हर रंग, आंखें हैं तो जीवन में खुशियों के हैं संग। जी हां बहनों, हम रोज सुबह उठते हैं, अपने आसपास देखते हैं, घर के काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बाजार जाते हैं, रास्ते में आते जाते लोगों को देखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुककर सोचा है कि अगर हमारी आंखें ना होती तो यह खूबसूरत दुनिया हमें कैसी लगती? बहनों, कहा गया है आंखें हैं तो जहान है। हमारी आंखें हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक और ज़रूरी महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इनकी थोड़ी सी देखभाल भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। घंटों मोबाइल देखना, कम रोशनी में पढ़ना या लगातार स्क्रीन पर नज़र लगाए रखना आँखों को थका सकता है, आँखों को कमज़ोर कर सकता है। इसलिए बहनों, अगर आपको भी मोबाइल देखने के बाद आंखों में जलन, पानी आना, भारीपन या धुंधला दिखाई देने जैसी समस्या हो, परेशानी महसूस हो, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिए। जब भी आप काम करें, एक आसान आदत अपनाएं, लगातार स्क्रीन देखने के बीच थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। कुछ देर के लिए मोबाइल एक तरफ रखिए और दूर की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। पढ़ते समय पर्याप्त रोशनी हो, इस बात का ध्यान रखिए। मोबाइल को आंखों के बहुत पास बिल्कुल भी ना रखें। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए खानपान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हरी सब्जियां, मौसमी फल, गाजर, दूध, दही, दालें और पौष्टिक खाद्य पदार्थ अपने भोजन में शामिल करें। और हाँ बहनों, आँखों में कोई परेशानी हो तो अपनी तरफ से कोई भी दवा या आई ड्रॉप डालने के बजाय या लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह पहले लें, क्योंकि बहनों, हम अपने घर परिवार का ध्यान रख

रखते रखते अक्सर खुद को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप स्वस्थ रहेंगी तभी अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। और जब आप अपने परिवार के साथ अपने स्वास्थ्य का, अपनी आंखों का ध्यान रखेंगी, तो अपने परिवार के साथ जीवन को कुछ इस प्रकार गुनगुना पाएंगी।

इस खूबसूरत गीत को सुनने के बाद अब करते हैं चर्चा बच्चों के स्वास्थ्य की। बहनों, आजकल बच्चों की पसंद में घर के पौष्टिक खाने से ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स और तरह तरह के पैकेट वाले स्नैक्स शामिल होते जा रहे हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बैग में किताबों के साथ एक और चीज़ होती है, वह है लंच बॉक्स। लेकिन सवाल यह है कि हमारे लाडले के लंच बॉक्स में आखिर क्या होना चाहिए? बहनों, एक बच्चे का लंच बॉक्स जो बॉक्स होता है सिर्फ बच्चे का पेट भरने के लिए नहीं होता। एक लंच बॉक्स उसके पूरे दिन की ऊर्जा और पढ़ाई पर भी असर डालता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे के लंच में पौष्टिक और घर का बना खाना ही हो। बच्चे के लंच में हर दिन एक सा खाना रखने के बजाय थोड़ा बदलाव कर खाना रखें। कभी वेजिटेबल पराठा हो, दही हो उसके साथ, कभी इडली सांभर हो, कभी पोहा तो कभी उपमा। बहनों, कभी कभी आप मौसमी फल भी रख सकते हैं। और बच्चा अगर मौसमी फल खाने के लिए मना कर रहा है तो आप जो फल हैं उनको काट कर तरह तरीके के जब रंग देखता है बच्चा तो उसके प्रति आकर्षित होता है, तो वो आपके जो कटे हुए फल हैं उनको भी खाना शुरू कर देगा। बच्चों के लिए खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ थोड़ा रंग बिरंगा हो, मैं बता चुकी हूँ। और सबसे ज़रूरी बात बहनों कि लंच में बहुत ज़्यादा तला भुना पैकेट वाला खाना बिल्कुल ना हो। एक बात और, बच्चों के सामने हम जैसा खाते हैं वे अक्सर वैसा ही सीखते हैं, जैसा करते हैं वैसा वह भी करते हैं। अगर घर में हर समय कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और जंक फूड जैसे खाद्य पदार्थ होंगे तो बच्चे भी इनका उपयोग करेंगे। इसीलिए बच्चों की सेहत सुधारने की शुरुआत अपने घर से और अपने आप से करें, अपनी थाली से करें। बहनों, जैसे हमने कहा था, आंखें हैं तो जहान है, वैसे ही स्वस्थ शरीर है तो इस जहान का हर रंग और भी खूबसूरत लगता है। इसीलिए बहनों

0: अपने लाडले के लंच बॉक्स को सिर्फ स्वाद का नहीं, सेहत और प्यार का डिब्बा बनाइए और अपनों के साथ मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ अब रुख करते हैं आज की वार्ता की ओर। बहनों, भारतीय संस्कृति अपने अंदर अनेक त्योहारों को समाहित किए हुए है। ये त्योहार ही हैं जो हमारे नीरस जीवन में नए रंग भरते हैं और हमें उत्साह और उमंग के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। हर महीने हमारे यहाँ कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है। अगर हम बात करें भाद्र मास की, तो यह महीना भी कई महत्वपूर्ण तीज त्योहारों से सजा हुआ है। इन पर्वों से हमारी आस्था के साथ साथ सामाजिक और पारिवारिक जुड़ाव है वो होता है, और उसकी जो सुंदर झलक है वो हम देखते हैं। सुंदर झलक किस प्रकार जो देखने को मिलती है, यही हमें जानना है। तो बहनों, सुनते हैं वार्ता क्रम के अंतर्गत भाद्र मास के तीज त्योहार और उनका सामाजिक महत्व। इस विषय पर पूरी जानकारी हमें दे रही हैं श्रीमती अंजलि गंधी। तो सुनते हैं हम और आप मिलकर यह वार्ता।
1: भाद्र मास पावस ऋतुओं का सिरमौर है। श्रावण और क्वार के मध्य में स्थित यह पौराणिक ऐतिहासिक रूप से समय की धरोहर है। भाद्र मास, जिसे हम भादो या भद्रा भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर का छठा महीना होता है। भाद्रपद की शुरुआत रक्षाबंधन के बाद पूर्णिमा से हो जाती है, क्योंकि इस पूर्णिमा पर चंद्रमा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, इसलिए इसे भाद्रपद कहते हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। भादो के महीने में हरियाली अपने चरम पर होती है। प्रकृति में उल्लास व हरियाली बिखरी रहती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने ऊपर हरी चादर ओढ़ रखी है। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक तिथि को, प्रत्येक महीने को एक उत्सव ही होती है, लेकिन भादो के महीने की कुछ बात ही अलग है। भाद्र मास में अनेक त्योहार आते हैं, जैसे कजरी तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, देवजूलनी एकादशी, गोवत्स द्वादशी, अनंत चतुर्दशी, बलदेव छठ, चौथ के चंद्रमा का दृश्य। लगभग इस महीने में 11 से 12 त्योहार आते हैं। इस महीने में गाँव की ग्रामीण महिलाएं बाहर बैठकर पेड़ों के नीचे हरियाली में बैठकर गीत और संगीत और मल्हार गाती हैं। बड़ा ही मधुरमय वातावरण रहता है। उसमें से एक दो पंक्ति है, भर भा

इस तरह कई महिलाएं मल्हार और गीत गाती हैं। इसमें इस महीने में सबसे पहले शुरू होता है कजरी तीज। कजरी तीज को कजली तीज भी कहते हैं। भादों की कृष्ण तृतीया को यह मनाई जाती है। इस दिन आसमान में काली घटाएं छाई रहती हैं। यह है आमतौर पर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले आती है। कजरी तीज का त्योहार मुख्य रूप से महिलाओं का पर्व है। सुहागन महिलाओं के लिए यह कजरी तीज हरियाली तीज की तरह ही होती है। राजस्थान में विशेष रूप से बूंदी के छोटे शहर में कजरी तीज के दौरान कई प्रक्रियाएं की जाती है और बड़े रूप से उत्सव मनाए जाते हैं। वहाँ पर अनेक विदेशी पर्यटक देखने के लिए भी आते हैं। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव को खुश रखने के लिए महिलाएं व्रत करती हैं, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती की लंबी अवधि के बाद आज के दिन इनका पुनः मिलन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आता है भादो की चौथ का चंद्रमा। जनश्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि भादो मास में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी का चंद्रमा यदि कोई देख लेता है तो उस व्यक्ति पर बिना किए किसी अपराध का दोष लगता है। इसलिए भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों के लोग भादो के कृष्ण पक्ष के चौथ के चंद्रमा को देखने से बचते हैं। फिर आती है हमारे बलदेव छठ। भादो के कृष्ण पक्ष की छठी को बलदेव छठ या देव छठ के रूप से जाना जाता है। इस दिन नंद नंदन कृष्ण के अग्रज बलदेव जी महाराज या बलदाव जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को भादो महीने की कृष्ण पक्ष छठी को देवकी के सातवें गर्भ को योग माया ने संकीर्णित करके वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिनसे बलदाव जी का जन्म हुआ। इनको बलराम, बलदाव, कृष्ण के अग्रज भ्राता

0: के नाम से भी जाना जाता है।
1: जन्माष्टमी।
0: भाद्र मास का यह प्रमुख त्योहार है। हम ब्रजवासियों के लिए तो जन्माष्टमी का त्योहार हमारी आत्मा के जैसे है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही जन्माष्टमी उत्सव के बिना व्रज का कोई महत्व नहीं है। कंस ने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाला था और आकाशवाणी के अनुसार कंस ने कृष्ण देवकी की होने वाली 8वीं संतान से मृत्यु का भय होने के कारण अपनी बहन को यातना दी। देवकी की एक एक करके 7 संतानों को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही कंस का अत्याचार व अमानवीयता का इस कदर चरम पर पहुंच चुकी थी, जनमानस का जीवन दूभर हो रहा था। इन्हीं कारणों के कारण भगवान का जन्म लेना आवश्यक हो गया और वो दिन आ ही गया जब भगवान कृष्ण ने भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे प्रकट हुए। सारे सिपाही सो गए, चारों ओर बारिश ही बारिश, सातों ताले खुल गए, बड़ा ही मनोरम वातावरण हो गया। चारों ओर मंदिरों में शंख गूंजने लगे, ध्वनियां बजने लगी। चमत्कारी रूप से देवकी के इस लाडले पुत्र महानायक लीलाधर श्री कृष्ण का मथुरा से गोकुल को प्रस्थान हुआ। बोलो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन घर घर में फलहारी भगवान बनते हैं, सारे मंदिरों में कीर्तन भजन होते हैं। रात को 12 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है। उसके बाद अत्रात्रि में भगवान का जलाभिषेक करके प्रसाद आरती होती है। पूरी मथुरा नगरी सजाई जाती है और ये कही जाती है, यशोदा हरि पाल ने झुलावे, हर रावे दुल रावे, काहे कहीं नजर न आवे। जन्माष्टमी के बारे में तो जितना हम कहेंगे शायद उतना ही हमको कम पड़ जाएगा। उसके बाद आएगी गोगा नवमी। जन्माष्टमी के अगले दिन सुबह के समय गोगा नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद माह की कृष्ण नवमी को गोगा जी की नवमी मनाई जाती है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें झारपीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ भागों में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा है। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। गोगा मेड़ी में श्रावण भादों में मेले लगते हैं, भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इनकी पूजा रक्षाबंधन की पूर्णिमा से भादो नवमी तक चलती है। सब लोग अपने घरों में थान वेदी बनाकर अखंड ज्योत जलाकर जागरण और पूजा करते हैं। गोगा नवमी के दिन गोगा जी की तस्वीर लगाकर लौंग पान और लड्डू से पूजा करते हैं और कहीं कहीं पर रोट और चावल भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद जोगी को दान दिया जाता है। झारपीर बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस तरह की सभी के मन में दृढ़ आस्था मानी गई है। फिर हमारा आएगा शुक्ल पक्ष, उसमें सबसे पहले आता है हमारे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी यह महाराष्ट्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह हिंदुओं का धर्म एक बहुत ही प्रिय पर्व है। यह भादों में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान का जन्म हुआ। यह त्योहार देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। गणेश मंगल देवादि देव महादेव शंकर और माँ पार्वती की संतान है। भगवान की पत्नी रिद्धि सिद्धि है। विघ्नहर्ता गणेश भगवान के दो पुत्र शुभ और लाभ है। गणेश जी की प्रतिमा को कोई 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए भी अपने घर में लाते हैं और बप्पा की पूजा करते हैं। तरह तरह के मोदक और पकवान बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ही विशेष रूप से यह पर्व मनाया जाता है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल दिया। और हमारे राजस्थान की एक छोटी सी पंक्ति है, रुनक रुनक पगने वरे बाजे गजानंद जी नाचे, गजानंद नाचे आज मारे गणपति जी नाचे, गजानंद जी नाचे आज मारे गणपति जी नाचे, रुनक रुनक पगने वरे बाजे गजानंद जी नाचे। उसके बाद आती है हमारे ऋषि पंचमी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। महिलाएं व बालिकाएं इस दिन उपवास करती हैं। वह ऋषि पंचमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। यह एक त्योहार ही नहीं अपितु तो एक व्रत है जिसमें सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। महावारी के समय बहुत से नियम कायदों को माना जाता है। अगर गलती वश इस समय कोई चूक हो जाती है तो उसके दोष से बचने के लिए यह व्रत महिलाओं को किया जाता है। इस दिन हल्का बोया नहीं खाते हैं। इसमें समा के चावल का उपयोग होता है और ऐसा कहा जाता है कि इसमें ओंगा की दांत

0: का भी बहुत विशेष महत्व बताया गया है। राधाष्टमी, फिर आता है हमारी राधाष्टमी का त्योहार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधाष्टमी को मनाई जाती है। यह जन्म अष्टमी के 15 दिन बाद आती है। पद्म पुराणों के अनुसार राजा वृषभानु जब यज्ञ के लिए सफाई कर रहे थे, तभी उनको भूमि पर कन्या के रूप में राधा जी मिली। राजा वृषभानु ने उनको अपनी बेटी स्वरूप उनका लालन पालन किया और पूरे बरसाने में मिठाइयाँ और बधाइयाँ गाई गईं। सारे ब्रज में मची है धूम, बरसाना नगरी सजने लगी। सारे ब्रज में मची है धूम, बरसाना नगरी सजने लगी। जन्म लियो राधा रानी, बधाई बाजे अंगना में। चार और बधाइयाँ और गीते गाई जाती हैं। राधा कृष्ण के बारे में तो कहना ही क्या, उनके प्रेम के बारे में तो तीनों लोग जानते हैं। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व तो अपूर्ण है। राधाष्टमी के दिन पूरे बरसाने को दुल्हन की भांति सजाया जाता है। लाखों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं। बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गह्वर की परिक्रमा करते हैं। वह लाल लीची के दर्शन करते हैं। वहाँ पर कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले लगते हैं। उसके बाद आती है हमारे देवजूलनी एकादशी। 24 एकादशी में से देवजूलनी एकादशी भी एक है। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष 11 को जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसे पद्म एकादशी भी कहते हैं, जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पड़ती है। इस दिन भगवान का कुआ पूजन हुआ था। आज के दिन मंदिरों में जगह जगह डोले पड़ते हैं। भगवान की झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान को झूले की सवारी में बिठाया जाता है और पास की ही किसी नदी में उनका स्नान किया जाता है। सामाजिक लोग भी आज के दिन अपने अपने बच्चों का कुआ पूजन भी करते हैं। गोवत्स द्वादशी, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। भारतीय पुराणों में गो माता में समस्त तीर्थ होने की बातें बताई गई हैं। कहा जाता है कि गाय में 36 करोड़ दही देवताओं का निवास होता है। ऐसी मान्यता है, यदि सभी देवी देवताओं का मनाना और पितरों को एक साथ खुश रखना है तो गो सेवा से बढ़कर कोई और अनुष्ठान नहीं है। इसलिए गोवत्स द्वादशी पर महिलाएं अपने बच्चे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पूर्व मनती है। आज के दिन सभी महिलाएं चने का भोजन भी करती हैं। अनंत चतुर्दशी, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा करने के बाद अनंती को गले में धारण किया जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव वन में कष्ट भोग रहे थे, जब भगवान ने उनको यह व्रत करने की सलाह दी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ यह व्रत विधि विधान व अनंत सूत्र धारण किया। इसके प्रभाव से उनके सारे संकट मुक्त हो गए। इस व्रत में भगवान विष्णु के चित्र को लगाकर पूजा की जाती है। उसके पास ही 14 कांटों से युक्त अनंत सूत्र यानी कि डोरा रखते हैं। वह पुरुष लोग अपने दाहिने हाथ में व स्त्री अपने बाएं हाथ में सूत्र धारण करती है और चांदी की अंति को गले में भी धारण करती है।
1: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी वार्ता, भाद्रपद के तीज त्योहार और उनका सामाजिक महत्व। जानकारी दी हमें अंजलि गंधी ने। और इसी के साथ अब रुख करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, अब वक्त हो गया है घरेलू नुस्खों का, तो बताते हैं अपनी प्यारी बहनों को कुछ घरेलू नुस्खे। बहनों, अक्सर हम जब बोतल को अंदर से साफ करते हैं तो बोतल को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब जब बोतल का मुंह छोटा होता है। ऐसे में एक आसान सा तरीका आजमा सकते हैं और वह है, बोतल के अंदर लोहे का छोटा सा जूना डाल दीजिए और बाहर से चुंबक लगाकर धीरे धीरे घुमाइए। चुंबक के साथ जूना भी अंदर घूमेगा और बोतल की जो अंदरूनी सतह है वह भी साफ हो जाएगी। इसी तरह बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं या हम अपने घरों में होते हैं तो हमने देखा है कि जो पानी है वो कभी कभी जो नल होता है उसमें से निकल रहा होता है। इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है। बहनों, अगर हम चाहते हैं कि पानी की बर्बादी ना हो तो हम केवल एक काम कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक की बोतल होती है उसका ऊपर वाला जो सिरा होता है उसको काट कर, यानी जो पानी की बोतल का जो हिस्सा होता है इससे पानी बाहर निकलता है उसको काट कर, और जो हमारा पानी जो नल है उसमें उसको पानी की बोतल के जो ढक्कन है उसको लगा दें, उसको टेपिंग कर दें, या जो बिजली का जो टेप आता है उससे उसको पूरा पैक कर दें, तो जो पानी की बर्बादी हो रही है हम उसे बचा सकते हैं। अगर बहनों हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तब भी हमें मंजिल भी मिलेगी। वैसे भी रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सबसून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो बहनों, ये थी हमारी कुछ घरेलू नुस्खे। इसी के साथ करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर पुनः रुख और सुनते हैं यह गीत है।

बहनों, अब समय हो गया है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम पेश किया प्रियंका खंडेलवाल ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

आनंद राज आनंद को आपने सुना फिल्म मस्ती में। आइए सुनते हैं पैडमैन फिल्म से ये गीत, स्वर हैं अरिजीत सिंह के।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: To the AFC Under 20 Asian Cup for the first time since 2006. In women's cricket, Bangladesh will take on Indonesia in the Group B match of the Women's T20 Asia Cup in Dubai today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with leaders of Shanghai Cooperation Organization member states in Bishkek today. Government notifies all six pillars of Semicon India Programme 2.0 with a total outlay of 1.27 lakh crore rupees. President Draupadi Murmu calls upon NIFT students to adopt global outlook while remaining rooted in the country's rich cultural heritage. Indian Navy commissions INS Nipun, a special designed platform to support wide spectrum of diving and underwater operations. Relief and rescue operations intensify in Nepal after deadly flash floods. Death toll rises to 903 and over 4,000 people are still missing. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
3: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में

0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
3: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
4: आज हम तेजी से

0: बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम

कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-0481 और 23717117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, एआई और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और एनआर प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांग जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और सुनिए

0: हमारा अगला प्रश्न था डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं।
1: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
0: हमारा अगला प्रश्न था मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है।
1: मौसिनराम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है।
1: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
0: श्रोताओं, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
1: जी।
0: सुविचार भेजना आसान है लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
1: सुविचार जरूर भेजें लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे।
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
2: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
3: Long Changla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
4: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
3: Yes.
4: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
3: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
4: Yes, let us play.
2: She tied a scarf over Ong Shangla's eyes.
3: Now, tell me, what do I hold in my hand?
4: How can I? My eyes are closed. I can't see.
3: You can find out. Try it. What do I hold?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is something soft. A flower.
3: Yes. But what flower is it? Smell it.
4: It is a rose.
3: Good. Now try another thing. What do I hold?
4: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
2: Ong Shangla took the bell and shook it herself.
3: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
2: Ong Shangla touched it.
4: It is a glass.
2: She put one finger slightly into the glass.
4: A glass of water?
3: Are you sure? It could be milk or juice.
2: Ong Shangla tasted it.
4: Oh, it is not water. It is orange juice.
3: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
0: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
0: साथियों आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
3: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
3: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगीं और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
4: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
5: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
4: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
5: यस।
3: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने

0: निज गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
2: सू
3: जी,
2: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
3: जी हाँ
2: भाई, मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही। जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
3: जी डॉक्टर साहब।
2: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
3: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
4: 15, 40
3: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
4: 13, 12, 11 ओह
3: जॉन्सी,
4: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
4: क्या गिन रही हो? 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू अब वो बहुत कम हो गए हैं।
3: क्या कम हो गए हैं?
4: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
3: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
4: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
3: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
4: Only 4
3: मेरी तरफ देखो
4: सू, only 4 ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
3: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
4: 3 पत्तियां।
3: पत्तियां?
4: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
3: हाँ हाँ,
4: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
3: क्या लगता है?
4: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
3: क्या जॉन्सी?
4: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
4: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
3: हाँ
4: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
3: जॉन्सी।
4: हाँ, हाँ।

0: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
1: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
0: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
1: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
2: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
0: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
1: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
3: टू, ओ, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
0: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
2: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
0: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
1: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
3: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
0: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
1: जैसे ही सुबह हुई जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल जरा खिड़की सू।
0: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी।

0: मंद हवा चल रही थी। आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था। चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
1: सू? हाँ जॉन्सी, सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
2: बिल्कुल जॉन्सी।
1: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
2: पत्ता?
1: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
2: हाँ, हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: हाँ, दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
4: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाए।
3: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
2: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
1: बेहतर।
2: ये लो, कॉफी पियो।
1: थैंक यू
2: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
1: क्या हुआ?
2: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
1: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
2: हाँ।
1: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
2: हाँ वही।
1: ओ, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
2: हाँ वही, मिस्टर बेरमैन।
1: ओ गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉन्सी, अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या
2: कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
2: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
0: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
2: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो, वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ,
1: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं,
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।

0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सु, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सु।
1: हाँ
0: मास्टरपीस,
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: बातचीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किए जा रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष SCO अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय है 25 ईयर्स ऑफ SCO टुगेदर टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। SCO मध्य एशिया और यूरेशिया का एक प्रमुख बहुपक्षीय संगठन है जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सदस्य हैं। भारत वर्ष 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बना था और तब से संगठन के एजेंडे में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के साथ साथ विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। ऐसे में बिश्केक शिखर सम्मेलन भारत के लिए मध्य एशिया के साथ रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। SCO सम्मेलन और भारत किर्गिस्तान के संबंधों पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं किर्गिस्तान में भारत के राजदूत श्री वीरेंद्र सिंह यादव। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान यात्रा के दौरान SCO समिट में शामिल होंगे और ये 26th समिट है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये समिट भारत के लिहाज से?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा है, ये प्राइमरी इज टू पार्टिसिपेट इन द 26th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स ऑफ द SCO एंड इंडिया अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज अ क्लाउड इन द ग्लोबल एरिना एंड इंडिया इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टेड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमीज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट State enjoys a considerable interest or I'll rather say influence amongst the other member states on what India's stand is on various issues. In that respect, everybody is looking forward to Honorable Prime Minister's statement during the SCO summit and wherein he would be highlighting what the India's priorities would be. And I think this visit is also an opportunity to strengthen our bilateral relationship with the Kyrgyz Republic and the warm and friendly ties between our two countries, which are based on historical and civilizational foundation.
1: सर, यदि भारत और किर्गिस्तान के संबंधों की बात करें तो किस तरह से आप इन्हें डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप परिभाषित करेंगे?
2: बहुत ही वार्म और फ्रेंडली पार्टनरशिप है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच और बोथ द कंट्रीज शेयर अ सिमिलर ग्लोबल विजन एंड वी कोऑपरेट वेरी क्लोजली नॉट ओनली बायलैटरली बट ऑल्सो इन द मल्टीलैटरल फोरम एंड जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के देयर सिमिलर चैलेंजेस और बोथ द कंट्रीज कोऑपरेट ईच अदर, लर्न फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंस and to continue in their journey of economic development to bring prosperity to their respective citizens.
1: सर, आपने जो चुनौतियों की बात की तो दोनों ही देश, भारत भी और किर्गिस्तान भी, एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उसमें टेररिज्म भी है, सेपरेटिज्म भी है और रेडिकलाइजेशन भी है, तो किस तरह से आपस में मिलकर इनसे निपटने की रणनीति तैयार होगी?
2: हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है किर्गिज गणराज्य के साथ एंड वी कंडक्ट एनुअली अ बायलैटरल एक्सरसाइज खंजर व्हिच वुड बी हैविंग इट्स 14th एडिशन इन फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड वी आल्सो कोऑपरेट वेरी क्लोजली इन द capacity enhancement through participation of Kyrgyz official in the defense ITEC programs and by curating tailor-made courses as per their specific requirements. And the joint working group meets annually and they chalk out a plan of action and all this is to enhance the capacities and share each other's experience to prepare for the meeting common challenges which you have listed.
1: सर, किर्गिस्तान जो है वो भारत का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड है। यदि हम सेंट्रल एशिया के साथ में भारत के संबंधों की बात करें तो कितना महत्व रखता है भारत के लिए किर्गिस्तान?
2: अगर आप देखें तो बिश्केक से दिल्ली 3 घंटे से कम समय लगता है थ्रू एन फ्लाइट, तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि हम कितने करीब हैं। और जैसे आपने कहा कि सेंट्रल एशिया और किर्गिज रिपब्लिक इंडिया के एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में आता है, दिस इज अ वे to closely cooperate with the region and including the Kyrgyz Republic. And this engagement is through the political dialogue, through the established institutional mechanisms in the field of defense and security, enhancing the trade and economic cooperation, and also having an excellent people-to-people linkages and cultural cooperation. And Kyrgyz Republic also hosts more than 16,000 Indian medical students, and they ensure that they have a safe and secure environment to study.
1: सर, भारत और किर्गिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष

0: संबंधों का, इसमें जो दोनों के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो सांस्कृतिक रिश्ते हैं, इनको और मजबूत बनाने के लिए हाल फिलहाल में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में और क्या कदम उठाए जाएंगे?
1: 2019 के बाद जो हमारा बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो पिछले 5 सालों में लगभग दुगना हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको और ऊंचाई तक कैसे ले जा सके। उसके लिए हम व्हाट आर द न्यू एरियाज वेयर वी शुड फोकस ऑन एंड लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस डेलीगेशंस दे विजिट किर्गिज रिपब्लिक, सिमिलरली फ्रॉम हियर दे पार्टिसिपेट इन वेरियस एग्जीबिशंस एंड वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर हाउ द बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर कुड बी इंक्रीज्ड एंड हाउ द म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स कैन बी प्रमोटेड बिटवीन द टू कंट्रीज।
0: जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी किर्गिस्तान में बड़ी संख्या में, तो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें और स्ट्रेंथन करने में वो कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: The Indian diaspora always is an asset because they are the organic bridges between the two countries and they help in creating an image of the country, and we are very proud that the Indian diaspora in the Kyrgyz Republic has lived up to that reputation and they act as a facilitator or medium to enhance the people-to-people linkages.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किर्गिस्तान की ये तीसरी यात्रा है, इसके पहले भी वो 2019 में एसियो समिट में भी शामिल होने की आ चुके हैं, ये यात्रा का कितना महत्व है?
1: प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण होती है, वो भले ही पहली हो या दूसरी हो या तीसरी हो। प्रधानमंत्री की यात्रा से बायलैटरल रिलेशंस को एक फिलिप मिलता है, एक सुदृढ़ता मिलती है और नए आयाम एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। मैं तो यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हर यात्रा महत्वपूर्ण है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी अपने किर्गिस्तान यात्रा के दौरान जो वर्ल्ड नोमैड गेम्स है उसके शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री जी का उसके शुभारंभ समारोह में शामिल होना कितना महत्व रखता है और इस पूरे रीजन के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है?
1: The organization of the 6th World Nomad Games is very significant for the Kyrgyz Republic because the games are returning to the Kyrgyz Republic after a little gap and they have been preparing extensively for organization of these games. They have built a new beautiful stadium which is the biggest stadium in the Central Asia in the form of traditional yurta, and the World Nomad Games is an opportunity for them to promote and propagate their rich cultural nomadic heritage, and there is a participation from India also, and we have a 73 strong contingent which is participating in archery, in wrestling, in other forms of game. And Honorable Prime Minister, he would be participating in the inauguration of the World Nomad Games, which is also a reflection of both the countries respecting their rich heritage, cultural heritage and way of life in case of India, which has been in existence for many, many centuries.
0: Thank you so much, sir. Akashwani Samachar se baat karne ke liye.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की बिश्केक यात्रा पर किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत बीरेंद्र सिंह यादव से आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये गीत लिया फिल्म मस्ती से। आवाज दे रहे गीत को आनंद राज आनंद, गीत समीर का, संगीत आनंद राज आनंद का।

आनंद राज आनंद को सुना आपने फिल्म मस्ती में, गीत समीर का, संगीत आनंद राज आनंद का। और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल की आवाज में, फिल्म जहर से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जहर में श्रेया घोषाल को। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: कार्यक्रम युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के युवाणी के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं आपसे नेत्रदान को लेकर। जी हाँ, नेत्रदान महादान। कहते भी हैं कि आँखें हैं तो जहान है। पल भर के लिए भी यदि हम अपनी आँखें बंद कर लिख करके इस बात का एहसास, इस बात का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हमारा मन घबरा उठा है, हमें परेशानी हो रही है। बस लगता है कि जल्दी से आंखें खोलें और इस खूबसूरत सी दुनिया को देखें, और जो प्रभु ने इस सुंदर संसार को रचा है, बसाया है, उसको हम महसूस करें। जी हाँ, कहते ही है ना कि आंखें हैं तो जहान है। कारण सिर्फ इतना कि आंखें हमारे लिए बेशकीमती हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसमें भी ये प्रमुख स्थान रखती हैं। हम आँखों से सबसे पहले जब जीवन में आते हैं, यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है और जब वो आँखें खोलता है, तो तब से ही वो एक भाषा आँखों की धीरे धीरे सीखने लगता है और संसार को अपनी आँखों से देखता है, समझता है। सभी को जो चेहरे को कहते हैं ना, चेहरे को पढ़ना, फेस रीडिंग, वो बचपन से शुरू करता है कि कौन मुझे किस तरह से मेरा अपना है, कौन मेरे लिए अजनबी है। कहने का आशय कि आँखें बहुत अहमियत रखती हैं हमारे जीवन में। और जब ये आँखें किसी दुर्घटनावश या किसी कारण से, बीमारी के कारण है, किसी भी कारण से जब हमसे हम अपने जो है हमारे पास आँखें नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में हम नेत्रदान, जो लोग नेत्रदान करते हैं, कहते हैं नेत्रदान महादान, तो दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी भरते हैं, दूसरों को उजाला देते हैं। और इसमें व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में भी उन आँखों का उपयोग कर रहा होता है और संसार से जाने के बाद दूसरों को भी जो उनके जीवन का जो अंधेरा है वो दूर कर सकता है। और नेत्रदान करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति ने जो अपनी आँखें दो नेत्र दान करी हैं, अलग अलग दो व्यक्तियों को उसका लाभ मिल जाता है और दो लोगों की जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। तो नेत्रदान है महादान। इस बात पर छोटी सी एक ये जानकारी भी सुन लेते हैं। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एम के तनेजा।
1: इन आंखों से हम इस सुंदर संसार को देखते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इस सुंदर संसार को नहीं देख सकते हैं। कुछ मरीजों की आंखों की कॉर्निया, जो कि पारदर्शी होती है, फुला, जाला या माला की वजह से अपारदर्शी हो जाती है और मरीज इस सुंदर संसारों को नहीं देख सकता है। मरणोपरांत आपके द्वारा दी गई आंखों से दो व्यक्तियों की आंखों में रोशनी मिल सकती है। अपने जीवन काल में अपनी आंखों का पंचीकरण करा के आप किन्हीं दो व्यक्तियों की आंखों में रोशनी दे सकते हैं? हाँ, चश्मा लगाने वाले व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इसके लिए पहले से ही अपना नाम अपने घर वालों के साथ एक पंचीकरण फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। आपके परिवार वालों की इसको पूरी जानकारी होनी चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और बाद में भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होता है, उन लोगों के

मरने के तुरंत बाद यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर ही आंखों को नेत्र सर्जन एवं उसकी टीम द्वारा अपना कार्य करके आंखों को तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजेंद्र प्रसाद सेंटर नई दिल्ली में भेज दिया जाता है और वहां पर वहां के नेत्र सर्जन और उनकी टीम 2 व्यक्तियों की आंखों में ऑपरेशन करके उन्हें रोशनी प्रदान कर देते हैं। वास्तव में यह रोशनी आपके द्वारा दी गई है। आप भी नेत्र दान का संकल्प करें और दृष्टिहीन व्यक्तियों को रोशनी प्रदान करें। पुरुष, महिला या बुजुर्ग व्यक्ति सभी नेत्रदान कर सकते हैं। आंख निकालने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर आंख को आई बैंक में पहुंचाना बहुत जरूरी है। फिर आई बैंक के कर्मचारी उन आंखों को सॉल्यूशन में रखकर फ्रीजिंग में रख देते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मरीजों का ऑपरेशन कर दिया जाता है। हाँ, लोगों में यह गलत धारणा है कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। हम नेत्रदान करने का संकल्प करें।

जी हाँ, बातें करें हम आपसे नेत्रदान महादान को लेकर। आज के इस अंक में आपने बातचीत सुनी, जानकारी ली डॉक्टर एम के तनेजा से, और अब बात करते हैं राज्य एवं केंद्रीय सेना में हमारे जो युवा हैं वो किस तरह से अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं, और हमारे जो पुरुष अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं वो अपना एक बेहतर कैरियर इस क्षेत्र में अपना बना सकते हैं। राज्य और केंद्रीय सेना यानी कि सेंट्रल फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज में भर्ती होने की प्रक्रिया

आपकी शैक्षणिक जो योग्यता है, आयु है, शारीरिक क्षमता है, इस बात पर निर्भर करती है। तो केंद्रीय स्तर पर आप भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना या अर्धसैनिक हमारे जो बल हैं, CRPF, BSF जैसे बल हैं, उनमें आप जा सकते हैं। जबकि राज्य स्तर पर पुलिस, प्रादेशिक हमारी जो सेना है उसमें आप जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में होती है, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और आपकी चिकित्सीय परीक्षण, यानी कि आपका मेडिकल जो चीज़ें हैं वो सब देखी जाती हैं, और उसके बाद होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। तो ये सारी चरण हैं, इन चरणों को मतलब ये स्टेप्स हैं, इनको पूरा करना होता है। और केंद्रीय सेना और सशस्त्र बलों में जो नौकरियां हैं उसमें ऑफिसर्स पद के प्रमुख प्रवेश हैं। आप NDA के माध्यम से, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपने 12th क्लास पास की हो और फिजिक्स और मैथ्स इसमें आपके विषय हों, तो UPSC में इसमें दो बार इसका NDA का एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराता है, तो इसके माध्यम से आप जा सकते हैं। और टेक्निकल ग्रेड भी है, तो TES के माध्यम से आप तकनीकी प्रवेश योजना जो है उसके माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपने 12th किया हो और 70% या उससे ज़्यादा आपके नंबर हो, तो आप इसमें अपना भर सकते हैं फॉर्म को। और CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ग्रेजुएशन के बाद आप जब अपना लास्ट ईयर के अपना जैसे BSc का फाइनल हो या BCOM जो भी आपका हो, तो उसमें जब फाइनल ईयर में हो तो आप इसमें आप उसको आप फॉर्म भर सकते हैं CDS का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। तो इसके ज़रिए आप सेना में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। और AFCET और INET यानी कि वायुसेना और नौसेना में अधिकारी बनने के लिए स्नातक की ये परीक्षाएं इनको दे सकते हैं। अदर रैंक्स पद के लिए भी अभी अग्निवीर आप समझ रहे होंगे, उसमें भी आप अपना आवेदन अपने आयु और शारीरिक क्षमता के अनुसार भर सकते हैं। इसमें 10वीं में 45% आपके जो है नंबर होने चाहिए अग्निवीर के लिए, और टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए या स्टोर कीपर के लिए कम से कम आपकी 12th आपने पास की हो, यानी इंटर आपने की हो। और बात अगर हम करें उम्र की, तो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसकी एक वेबसाइट भी है, जॉइन इंडियन आर्मी के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें आप भर सकते हैं। तो ITBP, BSF, CRPF, CISF, SSB ये सभी ऐसे बल हैं जहां हमारे युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। बातें आपसे और भी, और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

अमीन साबरी फरी साबरी के स्वर में ये कव्वाली, रचना समीर की, फिल्म सिर्फ तुमसे।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म सोल्जर में, की समीर का संगीत अनु मलिक का, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आज का युवाणी यहीं संपन्न करते हैं। चलते चलते साथियों से सिर्फ इतना कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, जल का संरक्षण करें और अपने परिवार को, घर को, समाज को कुछ सार्थक पहल के द्वारा कुछ अच्छा करने का प्रोत्साहित सदैव करते रहें। इसी बात के साथ बस यहीं तक आज का कार्यक्रम। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। युवा साथी सुन रहे थे अभी अपना कार्यक्रम युवाणी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। ईएफसी अंडर-20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर-20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

संध्या वंदन, जी हाँ संध्या वंदन का समय रहेगा संध्या 6:30। संध्या 6:50 पर किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज चर्चा रहेगी धान की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन, साथ ही बरसात के मौसम में पशुओं के चारे की व्यवस्था, इस विषय पर चर्चा। और डॉक्टर कृष्ण अवतार से, जी हाँ डॉक्टर कृष्ण अवतार मीणा से सुनेंगे आप वार्ता, खरीफ की प्रमुख सब्जियों में पौध संरक्षण, इस विषय पर ये वार्ता। साथ ही लेंगे आनंद कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का।

संध्या 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम शाम सुहानी का समय रहेगा 7:31। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे एक बार फिर से आप रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में, और सुहाने तराने कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। पब्लिक स्पीक, जी हाँ, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात्रि 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गोवर्धन दास शर्मा का लिखा रास राधा महादेव लीला। प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की रहेगी। समय रात्रि 10 बजे। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विदुषी कंकना का ख्याल गायन, जो राग नंद पर निबद्ध रहेगा। तबले पर संगत करेंगे गुलाम साबिर, सारंगी पर संगत करेंगे मुनीर खां। तो ये था विवरण हमारे सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: जो सुनिए कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में आज आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से ब्रजवार्ता, ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर।
1: हमारा विशाल भारतवर्ष एक बृहद लोक है, जहाँ अनेक सभ्यताएं एवं अनेक संस्कृतियां अपनी सुगंध प्रकीर्णित करती रहती हैं। कहा जाता है, भिन्न है भाषा, भिन्न है वेश, अखंड है राष्ट्र, एक है देश। यानी यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न वेश हैं, परंतु हमारा राष्ट्र

एक है और एक ही हमारा देश है। इसी भारतवर्ष में है ब्रज 84 कोस और उसका है अपना अवर्णनीय साहित्य। ब्रज एवं ब्रज संस्कृति भारतीय संस्कृति की प्राण व अनमोल धरोहर है, जिसका प्रभाव हमारे पूरे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर दिखाई देता है। ब्रज संस्कृति और उससे जुड़े समृद्ध साहित्य के मूल में भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने आपसी सद्भाव, भाईचारे, त्याग का उद्घोषणा की है और उसी भावना को लेकर यहाँ साहित्य का निर्माण होता रहा है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, समाज में जो कुछ प्रतिफलित होता है वही साहित्यिक सामग्री का रूप धर लेता है। ब्रज लोक साहित्य में समाज के जीवन दर्शन के संदर्शन हुआ करते हैं। साहित्य समाज का व्याख्याता है, इसलिए समाज में जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ घटित होता है वही साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। ब्रज साहित्य में यदि सद्भावना के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो कृष्णकालीन साहित्य से आज तक इस स्वरूप का दिग्दर्शन भली भांति किया जा सकता है। कृष्णकालीन कथाओं और तत्कालीन परिस्थितियों के साहित्य में सद्भावना को प्रकट होते देखा जा सकता है। इसमें तनिक संदेह नहीं कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण होता है। लोक जीवन के समरसता और सहजता के समस्त हृदयगत भावों तथा उसकी अनुभूति को लोक साहित्य में देखा जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति की अंगड़ाई ने न केवल प्राचीन लोक जीवन के परिदृश्य को बदला है, वरन देशभक्ति राष्ट्रप्रेम को भी प्रभावित किया है। शत्रु देशों की साम्राज्यवादी नीति के कारण सचेत हुए जनमानस की आपसी सद्भाव, प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावनाएं साहित्य में भी मुखरित हो उठी हैं। जहां भी सामाजिक विद्रोह और राजनीतिक क्रांति का बिगुल बजा है, वहीं साहित्य के स्वरों ने जनमानस को एक नई चेतना, नई स्फूर्ति, उत्साह, उमंग और राष्ट्रहित की भावना से उत्प्रोत कर दिया है। ब्रज साहित्य में भी यही राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी स्वर जगह जगह परिलक्षित होते हैं। जन जागरण, आपसी सद्भाव, भाईचारे की भावना से ओतप्रोत साहित्य में वीर और महान पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों का बड़ा ही योगदान रहा है। वीर बलिदानियों के कार्यों से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर राष्ट्रीय प्रेम, सद्भावना, त्याग और बलिदान के स्वर ब्रज साहित्य में उपलब्ध होते हैं। आज भी ब्रजवासी इन गीतों को अपने स्वरों में सजाकर समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नया संदेश देते हैं। हमारे एक कवि साहित्यकार पंडित सावलदास सुप्रेती ने अपनी एक रचना में ब्रिटिश राज के शोषण से पीड़ित भारत माता का चित्र इस तरह प्रस्तुत किया है। अब और जुलम नहीं सहनो, अय हां जा कीचक ने रार मचाई, अय हां मेरी भूमि भाए पेर आई, अब बेगई मुकुत कराओ। अंग्रेजों ने निष्कंटक राज्य करने को या हिंदू मुसलमानों में भी फूट डालने की कोशिश की, जिन्हें के इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। दे रहो बढ़ू भक्ति दुश्मन चौकस रहियो फारे पे, दे रहो बड़ू भक्ति दुश्मन चौकस रहियो फारे पे, जिन्ना कूदई फूक दई गोरो बड़ो दुश्चार आजादी देवी कहे परिना खैर खुवार। कहने का आशय ये है कि इन भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य की जो रचनाएं मिलती हैं वो हमारे आपसी सद्भाव और प्रेम और देश प्रेम को जगाने के लिए पर्याप्त संदेश देती हैं। चीन के भारत आक्रमण पर भी ब्रजवासियों की एकता और सद्भावना को व्यक्त करती हुई ये पंक्तियां जनमानस को झकझोर देती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोल्यो, आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोल्यो, आजादी हित प्राण देव आजाद वीर बोल्यो, करे के मरो टेक यही प्राण बलिदान आन यही, सुखी आजाद हिंद जीवे अमर होए अमृत रस पीवे, आस भारत की आजादी को दीवानो वे ज्वानन ते बोलो।
गुलाम भारत को आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस के

0: योगदान को व्यक्त करती ब्रजभाषा साहित्य की ये पंक्तियां आज के युवाओं के हृदय में भी उस प्रेम को जागृत करने के लिए पर्याप्त हैं, जो कि इस प्रकार हैं: आजा आजा बोस बंगाली, आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई, तेने हिंद की फौज बनाई, दुश्मन ते करी लड़ाई, तेने ईंट ते ईंट बजाई, दुश्मन पे तोप चलाई, आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई, तेने कर दियो बेड़ा पार भारत के हिमताई, आजा आजा बोस बंगाली, तेने हिंद की फौज बनाई। इसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति की मूल भावना तथा उसके उत्थान पतन आह्लाद विषाद की भावना से संपूरित ब्रज साहित्य ब्रजवासियों को राष्ट्र हित हेतु सजग करते हुए इस प्रकार की भावनाओं को सदैव उत्प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। सबको रहेगो सिरताज सदा भारत देश हमारो, यानी कि विश्व के सिरमौर के रूप में हमारे भारत की जो कल्पना है, विश्व गुरु के रूप में जो कल्पना है, वो ब्रजभाषा के साहित्य में हमें सहज रूप से दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार भारत भूमि एक है, यहाँ रहने वाले सब आपसी सद्भाव और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसी भावना को व्यक्त करती ये पंक्तियाँ दिल को छू लेती हैं। कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, कोई कहता इसे इंडिया, कोई हिंदुस्तान, भारत में रहने वालों की ये है भारत माँ। वंदे मातरम वंदे मातरम, सोने की चिड़िया है ये भूमि जग नदी उपमा, सोने की चिड़िया है ये भूमि जग नदी उपमा, दिल्ली हृदय बनी राजधानी चरण पखारे सागर पानी, दिल्ली हृदय बनी राजधानी चरण पखारे सागर पानी, जगन्नाथ बद्री रामेश्वर भेंट द्वारका महाकालेश्वर, जगन्नाथ बद्री रामेश्वर भेंट द्वारका महाकालेश्वर, भारतीयों एक सूत्र में अद्भुत काम किया परमेश्वर। कहने का आशय ये कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की जो भावना है, वो यहाँ ब्रजभाषा के साहित्य में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। सभी पड़ोसी बात समारे समाधान मिल बैठ बिचारे, ये कैसी पंक्तियां हैं जो आज भी हमारे आपसी सद्भाव को बढ़ाती हैं कि पड़ोसी भी यदि आपस में किसी बात को लेकर मतभेद है, पड़ोसी में भी मतभेद है, तो हम आपस में बैठकर उसका समाधान खोजें। यदि कोई बना मोहम्मद गौरी करे आक्रमण चोरी चोरी, राम कृष्ण की धरती का जलियां बाग न जलने देंगे, वंदे मातरम एक नमन है, वंदे मातरम एक हवन है, हवन ये जारी रखना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, हवन ये जारी रखना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करता हुआ हमारा ब्रज भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यदि जनमानस को झकझोर हैं, तो देश प्रेम, आपसी सद्भाव, आह्लाद विषाद सभी भावनाओं को वो संपूर्ण संदेश देने में सहयोगी हो सकता है। एक मुक्तक और भी आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो कि आधुनिक साहित्य की एक रचना है, गीता के शब्द बाइबल कुरान क्या करे, गीता के शब्द बाइबल कुरान क्या करे, गौतम और नानक देव की जुबान क्या करे, जब भावना नहीं तो भगवान क्या करे, इंसानियत है दफन तो इंसान क्या करे, इंसानियत है दफन तो इंसान क्या करे।
1: अभी आप सुन रहे थे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर लक्ष्मी गौतम से अभी आपने सुनी ब्रजवार्ता, ब्रज साहित्य में सद्भावना के स्वर। इसी के साथ आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म राम तेरी गंगा मैली से, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म राम तेरी गंगा मैली में। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या वंदन। कार्यक्रम का अगला गीत आरती मुखर्जी के स्वर में।

आरती मुखर्जी को सुना आपने गीत गाता चल फिल्म में, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और आइए सुनते हैं संध्या वंदन।

कार्यक्रम में आशा भोसले, उदित नारायण और वैश को फिल्म लगान में, गीत जावेद अख्तर का, संगीत ए आर रहमान का।

आशा भोसले, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म लगान में, गीत जावेद अख्तर का, संगीत एआर रहमान का। और आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत, शकील बदायूनी का, संगीत नौशाद का। स्वर दे रहे गीत को आशा भोसले, फिल्म अमर से।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म हरी दर्शन में। गीत प्रदीप का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। किसान भाई और बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम लेके आ रहे हैं आपके बीच वीरेंद्र सिंह।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन को राम राम। भैया देखो, या समय पे हमारी खेती में धान की फसल खड़ी है और या में या वक्त

कर्वे बारे जो काम है वो जी के भाई उनमें रोग और कीटन को प्रबंधन कर लियो जाए। मतलब जे है कि जो हमारी फसल धान की अब या वक्त बाली जो है कोथ में आ गई है, तो कोथ में जब बाल आ जावे का है तो बरसात की बूंदन ते जरूर कोथ में जो है गिड़ार बन जाए और वो गिड़ार व कोथ में ही बाले खा जाए। जैसे ही दूध बनवो शुरू हुए बाल में सो सबरे बागे बाली के गूद है बागे दूध है सबे काट के डाल दे और बाल बनवे तो पहले भैया हमारी फसल में नुकसान है जाए। तो वाके प्रबंधन के ताई वाके नियंत्रण के ताई भैया सब जाने भैया हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ बतामते चले आ रहे हैं कि भाई वाके का आज हमें छिड़काव ऐसा करना चाहिए जो के वो कीटा जो है कीट जो है रुक जाए और जहाँ की तहाँ हमारी जो बाली में जो कोथ में जो कीड़ा पनप को है वो वहीं नष्ट रह जाए। दूसरी बात रही कि भाई अगर फसल में कोई रोग आए हुए जैसे जलगड़न और तुम्हारो जो पत्ता लपेट और जो सूखो रोग जो कहना के बाल सूखी रह गई। अब बाल सूखी कैसे रह गई कि कोथ में एक ऐसा कीड़ा लग जाए जो के हमारी बाले जहाँ की तहाँ सुखाए दे। जब वो निकल के आ भाई तो जैसे बर्रू ना हुए बिंडोरी को ऐसो बर्रू से निकल ले रह जाए ओ भैया वहाँ दानो ना पड़े। अब एक चीज बताओ हमने इतनी मेहनत करी धान रुपाई करवाई खाद लगायो बीज लगायो पानी लगायो दुनिया भर की मेहनत करी और भैया बर्रू से निकल हमें पूरे खेत में सूखे धान ठाड़े रह जाएं तो बताओ वो हमारे कहाँ काम के। यही के काजे देखो क्रटोप आप सब जानो क्रटोप अगर खात में मिला के बुरक दी जाए तो जो जलगड़न और जो पत्ता लपेट और जो कोथ में कीड़ा लग जाए का है बाकी रोकथाम है जाए। वैसे तो विशेषज्ञ समय समय पर बतामते रहें भैया उनके अनुभवंती अपने जो बड़े बूढ़े के अनुभवंती हम जो है अगर फसल में इन कीटन को रोगन को प्रबंधन करते चले आमें तो हमारी फसल में कोई नुकसान नहीं हुए। जब हम कृषि समाचार बताएंगे तो वहाँ में भैया और धान के कीटन की कैसे नियंत्रण करे जाएगो जाके बारे में और बताएंगे। तो ये तो रही चर्चा धान की फसल में रोग और कीट प्रबंधन की। अब देखो कार्यक्रम में मनोरंजन है वो जरूरी है तो भैया अच्छो ना एक लोकगीत तो आपको मनोज कुमार सक्सेना के स्वर में सुनवाई दिया जाए जमुना दर्शन करके मगन मेरो मन है जाए।

0: यमुना दर्शन करके मगन मेरो मन है जावे। भैया आओ, अभी मनोज कुमार सक्सेना का सुर में आप जा लोक गीत को आनंद ले रहे थे। देखो भैया, सरसों की फसल अब देखो अगार आए के जो हमारी रबी की फसल होगी जो में होगी, तो वाके काजे हम अगर जिनके खेत खाली पहले ही है या जो जल्दी अगाई धान जिन्हें लगाए दें, तो वो भाई ऐसा होगा कि जो कहें कि अगाए उसे सवायो, तो हम वाकी तैयारी पहले तो केस कर लें। तो यही विषय पे एक सरसों की राष्ट्रीय कार्यशाला को हमने आयोजन करो है, जहाँ में डॉक्टर बीपी सिंह जानकारी देंगे। इनसे भेंट कर रहे हैं दिलीप यादव। सुनो भैया, सरसों की राष्ट्रीय कार्यशाला
1: हमारे संग है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर के निदेशक डॉक्टर बीपी सिंह जी। यहाँ दो दिवसीय कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला को आयोजन किया गया है और यह कार्यशाला में देश भर के जाने माने वैज्ञानिक, डीटीजी, डीजी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आला अफसर सब लोग मौजूद रहे और दो दिन में वैज्ञानिकों ने मंथन किया है कि खाद्य तेल के मामले में जो मुख्य फसल है सरसों, वाकई अच्छी किस्म, रोग रोधी किस्म, अनुसंधान और किसान की माली हालत सुधारने की नीति पर चर्चा भी है। तो यह दो दिवसीय कार्यशाला में कितने लोगों ने प्रतिभा किया और कहाँ फाइंडिंग आई, यही विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर।
2: देखो किसान भाइयों, ये जो वार्षिक समूह बैठक थी हमारी, ये आपको बताऊं 33वीं वार्षिक समूह बैठक थी और ये बड़ा संयोग था कि हमारे वृत्त क्षेत्र में पुर में ये पहली बार आयोजित की गई। बाकी इसको हम किसी विश्वविद्यालय में और वहीं पर आयोजित करते हैं, तो ये भी एक संयोग रहा। और इसमें ये हाइब्रिड मोड में हमें जैसा आदेश मिला था की गई। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि कुछ लोग यहाँ आ जाएं, कुछ लोग आपके ऑनलाइन जो माध्यम है वीसी के माध्यम से जुड़े, लेकिन करीब हमारे 100 से ज्यादा प्रतिभागी इसमें पूरे देश से इसमें सम्मिलित हुए। और इसके साथ साथ हमारे जो महानिदेशक हैं आईसीआर के डॉक्टर एमएल जाट साहब, तो उन्होंने भी ऑनलाइन हमारे पूरे ग्रुप को संबोधित किया। और फिजिकली हमारे डॉक्टर डीके यादव साहब जो कि उप महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान पर फसल विज्ञान के, वो यहाँ पूरे दिन रहे, उन्होंने पूरे प्रोग्राम को सुना। इसमें मूलतः हम ये देखते हैं कि जो पिछले साल जैसे 25-26 था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या किया फसल सुधार के लिए। फसल सुधार का मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई हम जो वैरायटी का विकास करते हैं, जो आपको किस्में मिलती हैं, फिर उनका बीज बनता है, बीज आप तक पहुंचता है, फिर आपकी उत्पादन बढ़ती है, फिर आपको सारा तेल का ये सिस्टम जो हमारा चलता है वो चलता है आपके बीज के विकास से, वैरायटी के विकास से, तो उसका किया। उसके बाद में बढ़िया एग्रोनॉमी कैसे हो, एग्रोनॉमी का मतलब है कितनी स्पेसिंग रखी जाए, खरपतवारों को कैसे निकाल जाए, आपके खाद और उर्वरक का कैसे प्रबंधन हो, आपके प्लांट प्रोटेक्शन की बात होती है जैसे कि आपके कीट हैं, रोग हैं, व्याधियां, इनका कैसे प्रबंधन किया जाए, नई नई चीजें कैसे आती हैं। उसके अलावा जैसे तेल की बात होती है, गुणवत्ता युक्त तेल की बात होती है, रूस से कमल की बात होती है, उसके बारे में विचार है। अगर आपके सूखा पड़ रहा है, आपके तेज धूप पड़ रही है, आपके कोल्ड पड़ रहा है, इससे कैसे बचाव हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो है कि किसानों को इन तकनीकों को कैसे लिया जाए। तो ये जो सब चीजें, इस पे जो मंथन हुआ पूरे दिन हुआ, और आपके दूसरे दिन आज जो पूरा मंथन हुआ है वो ऐसा है कि नई नई विधाएं क्या हैं, वहां पे किसानों को क्या करना चाहिए, किसानों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपके जो प्रजनक बीज है उसकी क्या स्थिति है, और इसमें ये होता है कि प्लान कैसे बनाया जाए। जैसे हमने 26-27 की जब आप बात करेंगे तो उसमें 26-27 में अब अक्टूबर में इसकी बिजाई शुरू हो जाएगी
1: जी।
2: तो उसके लिए प्लान भी बनाना पड़ता है कि भाई इस सेंटर को ये काम करना है, उस सेंटर को ये काम करना है, क्रॉप के लिए ये काम करना है। तो ये सब जो प्लान है हमने बना के तैयार किया है। और इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो उप महानिदेशक थे डॉक्टर डी के यादव, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें 4 किस्मों को अनुशंसित किया गया है। तो एक किस्म अपनी एक हाइब्रिड किस्म है जिसकी उत्पादन क्षमता आपके 30 क्विंटल से ज्यादा है, और 3 वेरायटी है।

0: एक आपके दो वेराइटी आपके जोन फर्स्ट के लिए हैं और एक वेराइटी हमारे इसी जोन थर्ड के लिए उसमें की गई है। तो ये हमारी उपलब्धि रही है कि हमने तीन वेराइटी देश के लिए और इसमें चिन्हित किए जो कि आगे जाके भारत सरकार द्वारा नोटिफाई होंगी और किसानों को उनका बीज मिलना शुरू हो जाएगा।
1: एक नए हाइब्रिड की शुरुआत
0: और एक नए
1: यहाँ
0: डीआरएमआर तो कोऑर्डिनेशन कर रहा है लेकिन हमारे सिस्टम से ही वो किया है, वो किसी प्राइवेट कंपनी का हाइब्रिड है, वो भी हमारे थ्रू ही आता है।
1: तो हाइब्रिड में सरसों के हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो लंबे समय से जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक हाइब्रिड की बात उठी और लंबे समय से ये मांग रही है कि अच्छे उत्पादन वाली सरसों अगर हो तो देश में रकबा बढ़ जाए, तो ये जो हाइब्रिड
0: देखो है, दिल्ली का यूनिवर्सिटी की जो हाइब्रिड की बात करते हैं वो हाइब्रिड पहले प्रथम दौर के हाइब्रिड 2008 में वो आया, उसमें किसानों को सबसे बड़ी समस्या करनी पड़ी, उसका दाना बहुत छोटा हुआ करता था। लेकिन अब जो आपके हाइब्रिड आ रहे हैं उसमें ऐसी समस्या कोई नहीं है। आपके जैसे हम मानते हैं कि 1000 दानों का जो भार है अगर करीब 5 ग्राम हो तो हाइब्रिड चलने लायक होता है, तो ऐसे हाइब्रिड आने लग गए हैं। इसी में किसी प्राइवेट पार्टनर ने जो अभी ये किया है तो इसका भी दाना बढ़िया है, उपज भी बढ़िया है। तो हाइब्रिड में जो पहले मिथ थे वो अब नहीं, अच्छे हाइब्रिड आ रहे हैं, अच्छी उपज दे रहे हैं, कोई दिक्कत।
1: चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की, किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: किसान भैया, देखो सरसों की राष्ट्रीय कार्यशाला या विषय पे अभी आप जानकारी ले रही और जानकारी दे रही डॉक्टर बीपी सिंह, इनसे भेंट कर रहे दिलीप यादव। अब भैया आपको एक और लोकगीत सुनवा दें, मोहन सिंह कुंतल के सुर में गायब हो, सुनो भैया जी लोकगीत।

0: रिस है कि पीहर मत जइयो। मोहन सिंह कुंतल के सुर में गाए भई, अभी जब ब्रज लोकगीत को आप आनंद ले रहे थे भैया। देखो भैया, खरीफ की फसल में हम धान की फसल तो कर ही रहे हैं, पर बहुत से हमारे किसान भैया सब्जी की खेती कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि खरीफ में अभी पौध लगी हुए कि ऐसी ऐसी सब्जी हैं जो कि भाई कछुदना पीछे लगती रहें और वो उनको फल लेते रहें और वो फिर दोबारा आते उत्पन्न करती रहें अपनी पैदावार। तो ऐसी खरीफ की प्रमुख सब्जी की पौधन को संरक्षण कैसे की हो जाए, यह विषय पे भैया एक वार्ता हम आपको सुनवा में डॉक्टर कृष्ण अवतार मीना आपको जानकारी देंगे। सुनो भैया,
1: खरीफ की प्रमुख सब्जियां टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी व कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं। कुष्मांड कुल की सब्जियों को कद्दू वर्गीय सब्जियां या बेलदार सब्जियां भी कहते हैं। कुष्मांड कुल की प्रमुख सब्जियां तर ककड़ी, करेला, काशी फल, घिया, खीरा, परवल, चिकनी तोरई, नसदार तोरई, टिंडा, खरबूजा व तरबूज हैं। इन सब्जियों पर प्रमुखतः निम्न कीटों का आक्रमण होता है। रस चूसने वाले कीट, इन कीटों में मुख्यतः सफ़ेद मक्खी, चेपा, हरा तेला, पर्णजीवी, लाल व पीली मकड़ी हैं। सफ़ेद मक्खी, इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं। इसके प्रभाव से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पत्ते सिकुड़कर नीचे की ओर मुड़ जाते हैं। सफ़ेद मक्खी वायरस रोग का संचारण करती हैं। चेपा, इस कीट के शिशु व प्रौढ़ पौधों के कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। यह कीट एक खास तरह का चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, जिससे पत्तियों पर काले कवक का विकास हो जाता है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। हरा तेला, इसके शिशु एवं व्यस्क पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पत्तियों का रंग पीला भूरा हो जाता है, किनारे मुड़ जाते हैं। पर्णजीवी, शिशु व प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों की निचली सतह से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों, कलियों व फूलों का गुच्छा बन जाता है। लाल व पीली मकड़ी या बरूथी, शिशु एवं व्यस्क दोनों ही अवस्थाएं पौधों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाती हैं। इससे पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक आक्रमण होने पर मकड़ी पौधों पर जाल बना लेती हैं। इन जालों से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती हैं, जिससे फूल व फल दोनों ही कम लगते हैं। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30 EC अथवा मेलाथियोन 50 EC अथवा मिथाइल डेमेटोन 25 EC 1 ml या इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL का 0.3 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। मकड़ी नियंत्रण हेतु प्रोपरजाइट ओमाइट 57 EC 1 ml अथवा डाइकोफोल 18.5 EC 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। पत्ती भक्षक व बेदक कीट, इन कीटों में मुख्यतः तंबाकू की सुंडी, पत्ती लपेटक, हड्डा भ्रंग व लाल भ्रंग आते हैं। तंबाकू की सुंडी, यह एक बहुवक्षी कीट है। इस कीट की सुंडियां फसल की पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। हड्डा भ्रंग, यह कीट मुख्य रूप से बैंगन व कद्दू वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का भ्रंग हल्दी तांबाई रंग का होता है, जिस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। गिडार व भ्रंग पत्तियों को ऊपरी सतह को खुरचकर खाते हैं। लाल भ्रंग, यह कद्दू

ये सब्जियों का प्रमुख कीट है। इस कीट का रंग गेरुआ लाल चमकदार होता है। इस कीट की गिडार जमीन के अंदर रहती हैं तथा पौधे के तने व जड़ों को खाती हैं। भृंग पत्तियों में छेद कर नुकसान पहुंचाता है। पत्ती भक्षक व भेदक कीटों के नियंत्रण हेतु मेलाथियोन 5% धूल का भुरकाव 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से करें, अथवा मेलाथियोन 50 EC तरल दवा का 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। फल छेदक या फल खाने वाले कीट। इन कीटों में मुख्यतः फल छेदक बैंगन का प्रोह एवं फल छेदक, भिंडी का प्रोह एवं फल छेदक एवं फल मक्की हैं। फल छेदक हेलिकोबर्पा आर्मी जेरा, यह एक बहुभक्षी कीट है। यह मुख्य रूप से टमाटर, मिर्च एवं भिंडी की सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट की मादा पौधे की कोमल शाखाओं, फूलों एवं फलों पर अंडे देती हैं। गिडार अंडों से निकलते ही कोमल पत्तियों व फूलों को खाती हैं तथा बाद में फलों में छेद कर गूदे को खाती हैं तथा फलों को काणा कर देती हैं। बैंगन का प्रोह व फल छेदक। इस कीट की सूंडी अंडे से निकलने के बाद कोमल प्रोहों, फूल के बाह्य दलपुंजों एवं छोटे छोटे फलों में प्रवेश कर जाती हैं और अंदर ही अंदर गूदे को खाती रहती हैं। कीट ग्रस्त प्रोह मुरझाकर लटक जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं। छोटे पौधों में प्रकोप होने पर वे प्राय मर जाते हैं। बैंगन का तना छेदक। इस कीट की सूंडियां तने में प्रवेश कर उसके कोमल भागों को खा जाती हैं और पौधों में भोजन का प्रवेश रुक जाता है। इसके प्रभाव से तना खोखला होकर सूख जाता है। भिंडी का प्रोह व फल छेदक। इस कीट की मुख्य रूप से दो प्रजातियां धब्बेदार व चिकनी सूंडी भिंडी को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी सूंडियां पौधे की कलियों एवं फलों में छेद करके अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। फलस्वरूप कलियां मुरझाकर लटक जाती हैं जिससे पौधों की बढ़वार रुक जाती हैं। तना व फलछेदक कीटों की रोकथाम हेतु एसीफेट 75 SP 2 किलो प्रति हेक्टर अथवा एंडोक्सकार्ब 14.5 SC 500 ml प्रति हेक्टर की दर से दो छिड़काव करें। पहला छिड़काव 50% फूल आने पर तथा दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 15 दिन बाद करें। फल मक्खी, यह कद्दू वर्गीय सब्जियों का प्रमुख कीट है। मक्खी का रंग चॉकलेटी भूरा और कहीं कहीं पर पीली तथा काली धारियां होती हैं। प्रौढ़ मक्खी अपने अंड निक्षेपक की मदद से फलों में छेद कर गूदे में अंडे देती हैं तथा बाहर से इन छेदों को एक लसदार पदार्थ से बंद कर देती हैं। अंडों से 3 से 5 दिन में गिडार बनकर फलों को अंदर ही अंदर खाती रहती हैं जिससे फल सड़ने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फल मक्की के नियंत्रण हेतु ग्रसित फलों को इकट्ठा करके गड्ढे में दबा दें जिससे इसका जीवन चक्र न बढ़ सकें। अप्रैल से जुलाई माह में व्यस्क मक्खियों की रोकथाम के लिए जहरीले पानी मिले घोल विष प्रलोभक बनाकर खेत में जगह जगह रख दें। इसके लिए 500 ग्राम गुड़ को 2 लीटर पानी में घोलकर उसमें मेलाथियोन 50 EC दवा 20 ml मिलाकर मिट्टी के प्यालों में 50 ml प्रति प्याले में डालकर इस कीट को आकर्षित कर नष्ट कर दें। खरीफ की सब्जियों के प्रमुख रोग एवं रोकथाम के उपाय। आद्र गलन, यह टमाटर मिर्च व बैंगन का प्रमुख रोग है। यह रोग पीथियम व फाइटोप्थोरा नामक कवकों से होता है। यह रोग पौधशाला में छोटे पौधों में अधिक होता है। इस रोग से पौधे भूमि सतह या सतह के नीचे से गलने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु बीज को थायरम या केप्टान 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। पौधशाला में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। जैसे ही पौधों पर इस रोग के लक्षण दिखाई दें, मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जड़ गांठ या मूल ग्रंथ रोग। भारत में इस रोग का प्रकोप टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों जैसे मिर्च, बैंगन, भिंडी, आलू, गाजर, अरबी व कद्दू वर्गीय सब्जियों पर होता है। यह रोग सूत्रकृमि द्वारा होता है। इसका मुख्य लक्षण जड़ों में बनने वाली बड़ी बड़ी गांठें ग्रंथियां हैं। ग्रसित पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है,
फूल व फल बहुत कम लगते हैं।

0: रोग प्रबंधन हेतु गर्मी के दिनों में खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। उचित फसल चक्र अपनावें, जैसे धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा आदि। पौध रोपण से पहले कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलो प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलावें। जीवाणु उकटा, यह टमाटर की एक जीवाणु जनित बीमारी है। इस रोग का मुख्य लक्षण, पूरा पौधा बिना पीला पड़े ही मुरझा जाता है। तने को चीरकर देखने पर भूरा दिखाई देता है। इस रोग की रोकथाम हेतु सदैव रोग मुक्त पौधों की रोपाई करें। रोग प्रभावित खेत में 3 वर्षीय फसल चक्र अपनावें। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 25 ग्राम प्रति 1000 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। लीफ कर्ल, यह टमाटर व मिर्च का विषाणु जनित रोग है। इसमें पत्तियां मुड़कर सख्त हो जाती हैं, पौधों का विकास रुक जाता है। यह बीमारी सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलती हैं। इस रोग के प्रबंधन हेतु यदि बीमारी कुछ ही पौधों में है तो उन्हें उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु इमिडा क्लोरपिड 17.8 SL दवा 5 ml प्रति 15 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। फोमोप्सिस ब्लाइट, यह बैंगन की एक प्रमुख बीमारी है जिसका प्रभाव पौधे के प्रत्येक भाग पर होता है। प्रभावित फल धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बोएं। उचित फसल चक्र अपनावें। मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें।
1: तो भैया अभी आप जानकारी ले रहे थे खरीफ की प्रमुख सब्जी में पौध संरक्षण, जानकारी दे रहे डॉक्टर कृष्ण अवतार मीना। अब भैया मथुरा उत्तर प्रदेश का मौसम को पूर्वानुमान, देखो भैया कल के मौसम की आपको जानकारी दें तो कल को अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता रहेगी 58%। हवा की गति रहेगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया अब आपको बतावें कि चावल की खेती में अगर सूनी कीट प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो वाकई रोकथाम के काज कटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% दानेदार रसायन 20-25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3-4 सेंटीमीटर स्थिर पानी में बुरकाव करें। धान की फसल में फुदका कीट को प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो या की रोकथाम के काजे इमीडा क्लोरोप्रिड 17.8%
2: KYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट।
3: वाह, RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक, ट्रस्ट के CEO समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर, 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअली नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने इस खंड पर नेपालगंज रोड वाराणसी सिटी विशेष गाड़ी को भी रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए रेलखंड और ट्रेनों से मिली कनेक्टिविटी प्रदेश में केवल बॉर्डर क्षेत्र की सुरक्षा और सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।

0: ये कनेक्टिविटी हमारे लिए केवल बॉर्डर क्षेत्र की सिक्योरिटी के लिए और सुविधा के लिए नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कारण इस क्षेत्र में विकास की अनंत संभावनाएं बढ़ेंगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और कृषि को एक नया आयाम मिलेगा।
1: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नेपाल में हुई त्रासदी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत सरकार की ओर से अपने मित्र राष्ट्र नेपाल के सहयोग के लिए त्वरित कदम उठाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नए रेलखंड की शुरुआत से यात्रियों को अधिक सुगम आवागमन मिलेगा और क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी के साथ विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि गेज परिवर्तन के साथ नानपारा, मटेरा, रिसिया, बहराइच, बभनान और नेपालगंज व्यापक रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। कार्यक्रम में उन्होंने नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमा से लगे रेलवे जोन के अधिकारी भी लगातार राज्य के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
2: भारत सरकार नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और रेलवे भी इस प्रयास में जुड़ा है। रेलवे के जो बॉर्डर के जोन्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, एनसीआर, ईसीआर और एनएफआर के कुछ हिस्से, इन सब के साथ मैं लगातार संपर्क में हूं और रेलवे के अधिकारी जिले के अधिकारियों के साथ, राज्य के अधिकारियों के साथ और एमईए के कोऑर्डिनेशन में लगातार काम कर रहे हैं। जहां पर भी रेस्क्यू होकर यात्री पहुंचे उन सबके लिए स्पेशल कोच लगा के व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का भी रेलवे ने लगातार प्रयास किया है।
1: कार्यक्रम में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजना से नेपाल के लोगों को भी लाभ मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सेवा संकल्प अभियान से संबंधित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी समेत अन्य वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण और अनवरत सेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा पूरे एक महीने तक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
3: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा समर्पण और कर्तव्य पथ पर लगातार 25 साल अनवरत सेवा के जो वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर पूरे एक माह तक ये सेवा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, जिसमें रक्तदान और युवाओं को और जो निसहाय लोग हैं उनकी सबकी मदद करके हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाएंगे।
1: प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री के अलावा 100 मीटर के दायरे में 8 मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के समय फैक्ट्री में 20 मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के करीब 200 जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। जिलाधिकारी डॉ अमित पाल ने बताया कि मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए कई जेसीबी मशीनें लगाकर तलाश और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार और राहत बचाव कार्य की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक 2 सितंबर को मणि रामदास छावनी के चार धाम में आयोजित होगी। बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 चरणों में प्रस्तावित इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव और 2 रिक्त सदस्य पदों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद को लेकर भी फैसला होने की संभावना है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बताया कि बैठक में सभी मुद्दों पर ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में फरार 2 बदमाश आज सुबह शामली में पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए।

0: इन दोनों शूटरों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में दो आरक्षी भी घायल हुए हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने बताया कि चार लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस शेष अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं।
0: इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज शामली पहुंचकर अंकित के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 17 जिलों की करीब 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की ओर से अब तक 1635 बाढ़ चौकियां और 254 बाढ़ शरणालय स्थापित किए जा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा किनारे बसे कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया है। एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की हैं, साथ ही ड्रोन से स्थिति की निगरानी की जा रही है।
2: जिले में 24 बाढ़ चौकियां चिकित्सीय स्टाफ और आवश्यक दवाओं के साथ संचालित हैं। एम्बुलेंस सेवाएं अलर्ट पर हैं, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और रैन बसेरों में भी मेडिकल टीमें तैनात हैं और रैपिड रिस्पांस टीमें 24 घंटे सक्रिय हैं। जिले में बारिश और जल प्रभाव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए आज और कल अवकाश घोषित किया गया है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: उधर चित्रकूट में रामघाट पर मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जो ऐसा क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित, जिसको हम लोग कहते हैं वरुणा से लगा हुआ क्षेत्र, वहां पर बाढ़ राहत चौकियां स्थापित की गई हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की गई है, मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। इसमें एनडीआरएफ जो हमारी बाढ़ राहत पीएसी है उसका डिप्लॉयमेंट और जल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो ये एरिया हमारा दशाश्वमेध घाट और आसपास का, नावों का संचालन लगातार बंद किया गया है। साथ साथ में जो गंगा आरती है उसके स्थल में भी परिवर्तन किया गया है।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेपालगंज रोड नानपारा बहराइच रेलखंड का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा की सुरक्षा और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ावा देगा ये कदम। प्रयागराज के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। अयोध्या में 2 सितंबर को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होगी अहम बैठक। ट्रस्ट के सीईओ समेत अन्य रिक्त पदों पर हो सकता है फैसला। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। 17 जिलों की 1,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: आपकी चाय।
5: EMI किराया कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा। इतना इजी?
6: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
5: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
6: ना भाई ना।
7: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: हम आकाशवाणी
10: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी। जी हाँ, आप भी सुन सकेंगे अपनी फरमाइश का फिल्मी नगमा। करें हमें व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414225575 94 122 25575।

श्रोताओं के व्हाट्सएप का, जी हाँ, श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश आ रहे हैं। हो चुका है सिलसिला शुरू। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से लीजिए सुनिए कार्यक्रम श्याम सुहानी। अपने संदेश के साथ में है श्रोता साथी व्हाट्सएप संदेश के साथ में। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल यादव, अनसुईया पवन राजे, छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंग्लिश, संध्या स्वराज और विराज का ये संदेश मिला और आप भी जुड़े कार्यक्रम में। उत्तम कुमार भगत, श्वेता किसुतासु, अर्णव सत्यमानंद पाकुड़ झारखंड से मैसेज भेजते हैं। मजनू का टीला से है, कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर सतना एमपी से, उमंग आकांक्षा और माही मलिक, हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय रुद्रा और रामेकर परवार राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज करते हैं। कलनौर हरियाणा से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, आप भी जुड़े कार्यक्रम में। सिद्धार्थ नगर दरियापुर भावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक येले, शेरी बडनी रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, संगीता जैन, सूरज पी आर जैन लातूर से मैसेज भेजते हैं और आप भी जुड़े। शेरवानी स्कूल गंजुरवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लोमना, आलिया और अंसारी का ये मैसेज मिला। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपार आशीष का ये मैसेज। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिपा, ईशान और पूजा परिहार जुड़े कार्यक्रम में। उच्च भाटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष गोस्वन्या और अनु गोस्वामी का ये मैसेज और आप भी जुड़े कार्यक्रम में अपने संदेश के साथ में। आप जुड़े कार्यक्रम में हैं अनिल कुमार, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रजक, रज्जू लाल, सोना मोना, हनी यस और ये भी सभी संदेश भेजते हैं कार्यक्रम में हमको। इन्होंने कार्यक्रम में शिवाजी चौक कटनी से हम तक संदेश भेजा। आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीति, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित, प्यारी, कोको रानी, ये सभी काशी विश्वनाथ धाम बनारस के श्रोता साथी हैं। आप जुड़े भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, समर्थ दादा देठे पाटिल, कुमारी सनिका देठे, धामणगांव महाराष्ट्र से ये श्रोता। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी, पप्पू महक, सनीता आरजू, हसमुखलाल बुलबुल, संजीव बंटी, ये परिवार जुड़ा कार्यक्रम में संदेश के साथ में। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोरवाल, गीतकार भानु प्रकाश जुड़े कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी और एक मैसेज के साथ में सुधी श्रोता गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलामान, नजीमीन परवीन, साबरा खातून, मोहम्मद फरमान, अब्दुल बिटिया, मदीहा, हिना फातिमा, रूबी नाजुक, शहजादी शराफत अली, ये सभी संदेश भेजते हैं कार्यक्रम में। आपने संदेश कहाँ से भेजा वो नहीं लिखा और अगले संदेश के साथ में सुधी श्रोता कृष्ण बाटे, संदीप और अम्बुल बाटे हैं नादुरा महाराष्ट्र से। सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया इब्राहिम, सद्दाम कुमार हेड़ा से ये मैसेज हम तक पहुंचा और आपने भी संदेश भेजा राजधानी दिल्ली से। आर एस स्वीटी, आई के इंदर और स्वीटी छाबड़ा। अगले संदेश के साथ में है मैसेज के साथ दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी मैसेज में है। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नारायणचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल और डुग्गू सिक्का का ये मैसेज मिला कार्यक्रम में।

मैसेज के साथ में ऊपरकोट बोला चौकुंटी बुलंदर शहर से है मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान और ये अब्बासी परिवार। मैसेज के साथ में अगला संदेश है संजय पाटिल उषा पाटिल प्रथमेश निवृत्ति शिव सागर संजय कुमार चौहान। ये सभी संदेश नसवाला चौक मलकापुर के श्रोता साथी। मैसेज के साथ में है पद्मा टॉकीज नेपाल नगर से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर नीति सुरभी अश्विन और मंगला बेन शाह। अगला संदेश है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनिजा विमला अनिजा का और एक और संदेश के साथ में उत्तम कुमार भगत श्वेता किशु अणम सत्यमानंद बुहाड़ा गाची पश्चिम बंगाल से मुन्ना और गुड्डी भगत।

का ये मैसेज है, मैसेज आपका भी मिला, संदेश के साथ में है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन शर्मा, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बासी परिवार, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती और संजय मारकंडे भी जुड़ चुके हैं। और आई सुने श्रोता साथियों की पसंद पर ये गीत, इस गीत को लिया हमने फिल्म लव मैरिज से, गीत हजरत जयपुरी का और संगीत शंकर जय किशन का।

श्रोता साथियों के व्हाट्सएप संदेश आप जुड़े कार्यक्रम में। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मनीष एक और मैसेज के साथ में है। सुधीर श्रोता कार्यक्रम में संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा का ये मैसेज मिला। नूतन किरण मॉडल टाउन करनाल के ये श्रोता साथी हैं। मैसेज आपका भी मिला। प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय मीर साय, भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह कैकरा, ये सभी सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि और मायरा का संदेश। सहसपुर लोहारा दनिया खुर्द जिला कथरवर्था कवर्धा छत्तीसगढ़ से गुनी राम राजपूत, संतोषी हेमप्रकाश, पुष्पराज सूरज राजपूत का ये मैसेज। गांव हिपर सोगा तहसील औसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा। एक और मैसेज के साथ में जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकस्टो, रोजी पल और विलिस डिकस्टो का ये मैसेज मिला है। और आप भी पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, संतोष भाकरे, सुरैना सुकन्या और सविता भाकरे, शाहजी नगर देगलू महाराष्ट्र से, आकली दीवान मध्य प्रदेश से भाई राम चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल और मीनाक्षी जुड़े हैं कार्यक्रम में। एक और मैसेज के साथ में है सुधीर श्रोता मैसेज के साथ। योगेंद्र नायक, गीता, निहारिका, सुष्ता और चौरसिया फरुखाबादी सुरेश, फाइव स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज यूपी के है ये सुधीर श्रोता। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, निभान शर्मा और सौरभ शर्मा का भी मैसेज मिल चुका है। और आप भी जुड़े। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, नागचुन रोड संजय कॉलोनी से हैं अब्दुल गफ्फार ड्राइवर, खुशनसीब, जियाउल हक मोहम्मद और राजेंद्र कटारे। मैसेज के साथ टैगोर गार्डन नई दिल्ली से है रविंद्र सिंह छाबड़ा, जदीत कौर और स्वीटी। सुधी श्रोता ये भी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम चौधरी, महेंद्र सिंह नगला राणा सिहोरा के सुधी श्रोता। राजा सिटी गोवर्धन रोड कॉलोनी से हैं शारदा प्रसाद प्रजापति और इनके परिवारी जन। एक और मैसेज के साथ में है ये श्रोता साथी खड़ग सिंह छोकर। जी हां, एडवोकेट खड़ग सिंह छोकर का संदेश मिला कार्यक्रम शाम सुहानी में। एक और मैसेज के साथ में है सैयद आलम हाशमी, समस्त हाशमी परिवार नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हम तक ये संदेश। और एक और मैसेज गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, पीती कार्तिक और आर्यन वर्मा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा सोनाली, सोनम और आशीष भी जुड़े। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये मैसेज मिला। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज का ये मैसेज। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी मिगलानी।

श्रोता साथी जुड़े हैं कार्यक्रम में मैसेज के साथ में। आप हैं रीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और ये गीत सुने हैं आप जिसे लिया है हमने फिल्म नसीब से। गीत अनवर का, स्वर दे रहे गीत को अनवर डॉक्टर महेश और सुमन कल्याणपुर। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

मैसेज के साथ में है सुधीश रूता मामलवाड़ी महाराष्ट्र से, सुपान तायड़े पीएस नवानकर और एक और संदेश के साथ में प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु बोरसरा नेला छत्तीसगढ़ से एक मैसेज के साथ में है गौतम नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंगले और आरती जोंगले सौरभ प्रकाश बबलू ये सभी जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ के सुधीर श्रोता गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला विशाल और निशा राठौड़ जुड़े कार्यक्रम में ओम प्रकाश गायकवाड़ आम्रपाली गायकवाड़ आविष्कार अनामिका प्रणता गायकवाड़ ने मैसेज भेजा हम तक तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से। एक और मैसेज के साथ वड़सिंगी बुलढाणा से है अमोल मानकर शोभा ताई मानकर और श्लोक दीपावली सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर कुमारी साधना और सुमेध कुमार जुड़े हैं कार्यक्रम में बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से।

जुड़े हैं श्रोता साथी व्हाट्सएप संदेशों के माध्यम से। राधेश्याम यादव, प्रभा यादव, शालिनी कामेश और भारती यादव सिंगाड़ तलाई खंडवा मध्य प्रदेश से, आप जुड़े गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण हंगोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली हंगोड़े, पार्थ और आपका भी मैसेज मिला, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से, प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दीपेंदर, वरिंदर और कुलदीप सिंधु, एकम, दमन, अभिजीत, ये सभी श्रोता साथी जुड़े। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुनकुल रानी का मैसेज। अगला मैसेज है आपने महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा एक मैसेज के साथ में। राजनगर मधुबनी से राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रवि, राज, गौरव और इनके मित्रगण। दीवाना रेडियो लिस्नर क्लब से हैं जमनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल और मेरा दीपक स्वाति जायसवाल, हमारे जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव और आर्य कुमार, रोमेंद्र, गौतम, धनेश्वरी नेताम, रोमेंद्र नेताम, चंचल, कामेश और माहिर नेताम, मुंडटोला, बालोद छत्तीसगढ़ से ये संदेश हम तक, भावी निमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम गोदली, उषा, पूनम और युवराज का मैसेज मिला। आप भी जुड़े कार्यक्रम में। तेली पारे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष विवेक और देवी आयुषी मैसेज के साथ में है। अजीज भाई, मतीन भाई, शहीद चंद, फरूख, फूल वाले, मौसा करीम, ये सभी मैसेज हमको भेजते हैं श्रोता हमारे। आई सुने सुधी श्रोताओं की पसंद पर फिल्म अनाड़ी से ये गीत। आवाज दे रहे हैं उदित नारायण, साधना सरगम, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का।

आप जुड़े श्रोता साथी मैसेज के साथ में कार्यक्रम में आपने संदेश भेजा। मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शुभिस्ता और मोहम्मद पलक और यश मंसूरी, मटिंगा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र आरंग, अंजू मोहित और लकी और तानिया का भी मैसेज मिला। और आप जुड़े कार्यक्रम में धमदा गांव सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका और आदित्य का ये संदेश। और आप जुड़े कार्यक्रम में कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी इदरिश और नूरुल मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना का ये संदेश मिला। एक और मैसेज के साथ में सुधी श्रोता साथी कोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुचिता, शशांक और सीमा। एक मैसेज के साथ में शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा अदनान, फैजान अनु खान, गए जुड़वा वारा के ये श्रोता साथी। और एक मैसेज आपका भी कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत और गुरु कीरत जुड़े हैं कार्यक्रम में। कुछ और संदेश के साथ में है आप बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, राई नगर गंडवारा से शमसुल खान, अदनान, फैजान, अनु और ताबिश आबाद और चांदनी। मैसेज के साथ मुरलीधर साहू, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश साहू रसेड़ा छत्तीसगढ़ से संदेश। कोपरगांव से सुरेश मलोदे, दर्शा मलोदे, शेरगांव, उषा गोंदली। आपका संदेश है संदेश सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर और निजामुद्दीन, राव भाऊ तांदले, राजकमल रेडियो, श्रोता संघ अष्टी जिला मराठवाड़ा से, नांदुरा महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना प्रतीक हिवराले, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अशोक आलोकित चंसौलिया, पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश के ये श्रोता साथी। मैसेज आपका भी कार्यक्रम में ममता बमारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से। एक और मैसेज के साथ में संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेली से मोहम्मद इश्ताक, खतीजा बेगम, आफरीन और नीलोफर फातिमा, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री प्रतीक कुमार, नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे, बरबट बुकाल बुलढाणा के ये सुधी श्रोता। वुडगहन छत्तीसगढ़ से जुड़े कार्यक्रम में राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति।

2.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

मेरा नाम जोकर। जी हाँ, अब इस फिल्म से सुना आपने गीत, स्वर दे रहे थे गीत को मुकेश, हजरत जयपुरी के गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

0: से मोहब्बत ना हो जाए।
1: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म प्रो

फिसर में। गीत हसरत जयपुरी का था, संगीत शंकर जयकिशन का। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे लिया फिल्म पुकार से। आवाज दे रहे हैं इस गीत को आशा भोसले और किशोर कुमार।

किशोर कुमार, आशा भोसले, राहुल देव वर्मन को अभी सुना आपने फिल्म पुकार में। गीत संगीत सचिन देव वर्मन का था। लीजिए सुनिए संवेद स्वर में देशगान।

अभी सुन रहे थे आप संवेद स्वर में देशगान, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म दिल है कि मानता नहीं। जी हाँ, इस फिल्म से सुनते हैं कुछ गीत। पहला गीत अनुराधा पौडवाल कुमार सानू के स्वर में, गीत फैज अनवर का, फैज अनवर के गीत को संगीत दिया नदीम श्रवण ने।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना, गीत फैज़ अनवर का, संगीत नदीम श्रवण का, एक ही फिल्म से। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म दिल है कि मानता नहीं। कार्यक्रम का अगला नगमा अभिजीत और अनुराधा पौडवाल के स्वर में, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अनुराधा पौडवाल को फिल्म दिल है कि मानता नहीं मैं, और अभी सुने कुमार सानू अनुराधा पौडवाल को गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को फिल्म दिल है कि मानता नहीं मैं। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और न्यूज़ 8 जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।

0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था

0: संस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण

0: कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और FC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति

0: फिल्म दे दनादन से अभी आपने ये गीत सुना। आवाज दे रहे थे गीत को आरडीबी मानिक और सलेना। आइए सुने सुजैन डिमेलो और हमजा के स्वर में अपना सपना मनी मनी इस फिल्म से गीत। शबीर अहमद के गीत को संगीत दिया प्रीतम ने।
1: Uptown girls, I know the 90s, we love it to the extreme and maximum. All right?

सुजैन डिमेलो और हमजा को अभी आपने सुना फिल्म अपना सपना मनी मनी में। शबीर अहमद का गीत, संगीत प्रीतम का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म देसी बॉयज से। आवाज़ इस गीत में मीका सिंह, शेफाली, एल्विस और साथियों की।

मीका सिंह, शेफाली एल्विस और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म देसी बॉयज़ में। इसी के साथ आर का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331041 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 0।

0: एक एक जरूर डाल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतज़ार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूँ कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल जी। जी अंशु कुमार जी बोलिए।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी जी क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ स्वागत।
1: सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
1: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसा रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से।

0: मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आखिर रुपये का शायद तो रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूशन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है।
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लेंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लेंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, UPI के थ्रू सारी पेमेंट आपका UPI के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो UPI और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
2: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट UPI के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, OTP आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है। तभी आप इनसे बच सकते हैं।

0: तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है। सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
1: जी जी,
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: जी नमस्कार, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी इसमें बीसी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मैं मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें, इस पर कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इस पे बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पे, जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इस पे थोड़ा सा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
0: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं, वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है। अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे
1: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका प्रश्न? जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका प्रश्न
3: आम पब्लिक के लिए
1: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं, वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
0: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नहीं सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे, तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे।

0: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि तो ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में। चूंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
2: बिल्कुल। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस।
1: जी
2: ये एआई के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये
1: जी
2: बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को। यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये
1: जी
2: एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको, सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं, जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये
1: जी
2: आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है। और
1: महत्वपूर्ण
2: ये चीजें
1: जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
3: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
1: जी
3: सर, मैंने
1: नमस्कार।
3: पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो हमने अदर बैंक से, प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ से निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर।
0: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहाँ से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहाँ से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहाँ से अपना शिकायत का निवारण करा सकते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी, आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की

0: डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी टैग AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेन होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल्स देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज
0: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AIR के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
0: जी। देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और

0: बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में सबने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
0: जी
1: जो
0: जी
1: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है, वो एक
0: महत्वपूर्ण है
1: AI ड्रिवन
0: जानकारी।
1: इकोसिस्टम है।
0: और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं, और आप हमें ज़रूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए, माधव राधा माधव लीला। जी हाँ, राधा माधव लीला इसके लेखक गोवर्धन दास शर्मा, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की है।

देखो श्री किशोरी जी के दर्शन किए बिना बहुत दिन है गए। आज ये मेरे मन में परम उत्कंठा भई है कि श्री राशेश्वरी श्री किशोरी जी के दर्शन कर मैं अपने नेत्रन को सफल करूं। चलो श्री बरसाने को चलूं।

0: अरे देख तेरे द्वार पे कौन है।
1: बाबा आप कौन हो और कहाँ से पधारे हो?
0: अरे मैया कहा तू मोए भूल गई, तेरी कुमार के जन्म के समय में आयो हो तो।
1: हाँ हाँ महाराज पहचान गई। आओ बिराजो।
0: तू तो बड़ी भोरी है।
1: आपको तो महाराज कई बरस है गए, आपकी तो मैं बड़ी बात देख रही थी। मेरे मन में तो कछु संदेह है महाराज।
0: अरे पूछ मैया कहा बात है।
1: आप बाको निवारण करो।
0: अरे मैया पहले तो ये बताओ कि जब ते मैं गयो हूँ ता पाछे तुम्हारी कुमार डरपी तो ना है और तुम्हें मेरो विश्वास भयो है कि ना है? भैया यह बात है बता दे।
1: आपने तो न जाने कहा जादू मंत्र सो कर दियो है के बादिन सो मेरी बेटी राधा है ना, बाको डरबो तो दूर बो कबो रोई तक ना है। मैं तो तुम्हारो बड़ो ही गुण मानू हूँ बाबा, बड़ो ही गुण मानू।
0: अरे मैया अच्छा तो मैया अब एक काम कर।
1: कहा महाराज?
0: के अपनी बेटी को बुलाए के मेरे शीश पे चरण धरवा दे, क्योंकि मेरे शीश पे बड़ो जंत्र है। यासो देख तेरी लाडली ना डरपेगी ना रोवेगी और देख सब अलाय बलाय ते दूर है जाएगी।
1: हे महाराज ऐसो कैसे है सके।

0: ऐसो कैसे है सके कि हम अहीर की बेटी आपके मस्तक पे पैर कैसे लगा सके हैं। हे जोगिन के राजा, आप कछु और उपाय करो।
1: देख मैया, मेरी बात ना मानेगी तो देख तेरी कुंवर आज ही और अब ही से डर पेगी और रोवेगी।
0: ना ना महाराज, ऐसो मत करो, मैं अब ही राधा बेटी को लाऊं। अरे बेटी राधा, ओ बेटी राधा, नेग इतकू तो आ, जे बाबा आए हैं, इनके माथे पे अपनो नेक पाम भर दे।

0: sul Balear.
1: Jedi.
0: धन्य धन्य कीरत जी, अब तुम्हारी कन्या अजर अमर हो गई। इनको कबहू बार बांको ना है सके है। अब तुम्हारे मन में और जो शंका हो सो कह दो।
2: हाँ महाराज। हे महाराज, आप तो तीनों कालन के जानवे बारे हो। हाँ, अंतर्यामी हो। पर महाराज, मैं एक बात पूछूं।
0: पूछ
2: कि नंदगांव में वो नंद को लाला कन्हैया है ना?
0: हाँ है मैया।
2: बाकी मैया यशोदा ने राधा को देख के विधाता सो अचरा पसार के जे मांगो है कि कन्हैया के संग में राधा को ब्याह है जाए। पर महाराज, कन्हैया में तो मुझे कछु चोरी के से लक्षण जान पड़े हैं, सो आप अपने मन की बात बताओ।

0: सोयो ना हूं, मैं अपने इष्ट देव सो तेरे संदेह को दूर करवे की बात पूछ रहा हूँ।
1: तो बाबा तेरे इष्ट देव ने कहा कही है ने, मोई तो बता।
0: हाँ मैया सुन, मेरे इष्ट देव ने ये बात बताई है कि ये संबंध है जाए तो दोनों कुल को नाम उजागर है जाएगा। राधा और कृष्ण की जोड़ी अनूठी जोड़ी है, भूतल पे भक्तन को सुख देवे के काजे प्रकट भी है। और रही चोरी की बात, सुमैया जब तुम सगाई कर दोगी ना तो बुहू आदत बाकी छूट जाए।
1: अच्छा महाराज।
0: अरे मैया देख, अब मोए तुम आज्ञा दे, मैं अपने स्थान को जाऊं, पर अपनी बेटी को वस्त्र दे दे।
1: महाराज ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखो महाराज, हमारे यहाँ कायवात की कमी है, जो कि आप पुराने वस्त्रन को मांग रहे हो, अच्छे अच्छे नए नए साल दुसाला पीतांबर जरी के महाराज तुम्हें चाहिए जैसे ले जाओ।
0: हे रानी जी, मेरे स्वामी की तो ये ऐसी आज्ञा है, मोह तो कोई उतरन ही देगा।

0: अरे मैया, ओ मैया, अब मैं चलूं हूँ, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो।
1: अच्छा महाराज, फिर कबहू दर्शन दीजो।
0: अच्छा मैया, आला भोले बाबा।

0: कू बजा रहे हो है, यासो हमारी गैया बिधक रही है, कछु चाहिए तो गांव में जाए के मांग, या बन में कहा रखियो है।
1: अरे भैया सुनो सुनो, बाबा के माथे पे तो कछु चंदा सा चमक रहे हो।
2: हाँ चमक तो रहो, चमक तो रहो है,
0: है? हाँ भैया।
2: अरे भैया मुकु तो ऐसा लगे, कहा सुनी?
1: हाँ
2: भैया मुकु तो ऐसा लगे,
1: कैसो?
2: ये तो कुछ जंतर मंत्र जादू टोना जाने,
1: जंतर मंत्र।
2: हाँ अच्छा। या लिए हाँ। या ते प्रेम प्रीत बढ़ाओ
1: हाँ।
2: और कुछ जंतर मंत्र सिखाई देगो।
1: हाँ ठीक।
0: अरे भैया देख
3: देख रहे दुनिया की झलक।
0: हाँ भैया देखवे में तो कछु गुणीसो लगे है, क्योंकि यहाँ आस पास को तो हतना है, कहूँ दूर ते आयो है।
1: अरे तुम काहे को बात अन्न बना रहे हो, हमने ऐसे बाबा जी बहुत से देखे हैं।
2: जा सारे
1: हाँ।
2: बुक तो ये को बाबा जी ना दिखे ऐसो, जाके मस्तक पर चंद्रमा होए।
4: तुम काई की झगड़ रहे हो, बाबा के पास जाए के नैया बात कर ले हो।
5: हाँ भैया ठीक है।
2: हाँ के नैया चल ऐसे करेंगे।
5: चलो
1: चलो भैया चलो।
5: और देखो हाँ ये बात तो ठीक
2: है,
5: ठीक कर रहे हो भैया, ठीक कर रहे हो। चलो चलो।

0: दंडवत महाराज, दंडवत।
1: बाबा आप कहाँ से पधारे हो यापन में, काहे काम से डोल रहे हो बाबा, बताओ तो सही।
2: अरे भैया मैं उत्तराखंड दक्षिण दिशा से आया हूँ और या वन की शोभा देख रहे हूँ।
3: भाई बाबा आप तो कछु हमको बड़े गुणी से मालूम पड़ो।
0: गुणी से मालूम पड़ो?
3: हाँ, आप कछु जंतर मंतर जानते हो तो हमें सिखा दो।
2: अरे भैया मैं जंतर मंतर खूब जानू और अनेक उपाय जानू।
3: अच्छा, फिर?
2: परंतु जब तुम्हारो सामरो सखा है ना,
3: वो सामरो,
2: हाँ अच्छा, पूछेगा तब मैं वाय बता दूंगा।
0: हाँ? भाई बता
2: देगो। हाँ
3: भैया, अब सब काम ठीक है गयो? अरे बिना कछु परिश्रम के घर बैठे वैद्य मिल गया, ये का कम है?
0: हाँ ठीक कह लो।
3: है
0: ओ बाबा, मेरी बात सुनने तेरे हाथ जोड़ी।
2: हाँ,
0: मेरी मैया ने एक बात कही थी, बोलते चलती समय
2: का
0: तो बाबा जी मैंने तो दंडवत कर दियो पहले तो।
2: अच्छा,
0: और एक बात और कही कि मेरी वो घूमर गई है ना, वो बीमार सी रही सदा, बाकी पीठ मेरे घात दर्द है बाबू, नजर गुजर कभी ना लगे, ऐसा कुछ जादू मंत्र कर रहे।
2: तो भैया तू ले अपनी गई बाबू।
1: अरे तू चुपचाप बैठ जा भैया। बाबा पहले मेरी सुन ले, मैं अपनी गैयान को बुलाऊ हूँ, जल्दी ते वाकू कछु अपने हाथन ते गंडा गोली बनाए दो बाबा।
2: अच्छा भैया बनाए दो।
3: अरे यार गांव की तो कछु उल्टी ही रीत है, पहले बाबा ते मैंने ही जंतर मंतर की पूछी हती, सो सब बीच में कूद पड़े। भैया ठहर जाओ, पहले मेरी बात पूरी है जान दो। हाँ
1: क्यों भैया, या मैं तेरी मेरी की कहा बात है, या मैं तो सबको काम होना चाहिए।
0: हाँ। अरे भैया और सुन लो ओ भैया घनश्याम और मूसर सुन ले।
1: कहा बात है भैया,
0: सब बात जाने तुम्हें मेरे यार
3: के कहा बात है।

0: देखो भैया
1: हाँ
0: कान खोल के सुन लो
1: हाँ,
0: या तो राजी खुशी मेरा काम पहले है जान दो
1: हाँ,
0: नहीं तो मैं बाबा को उठा के अपने घर ले जाऊंगा। और सबसे पहले जंतर मंतर और जड़ी बूटी जो कछु है मैं ले लूंगा। और वो नंद को कन्हैया है ना बाबू नालिंदा हाथ गई है मेरे यारो गजब
2: ढींगरा।

0: अरे भैया, ओ कन्हैया।
1: हाँ भैया।
0: अरे भैया या बाबा को मिर्गी आई गई। अरे जल्दी आइयो, तो रज में लोट पोट है रहे हो। या को कुछ उपचार करो।
1: अरे भैया बोल वालो।
0: अरे का जा रहा
2: है भैया?
1: अरे देखो हमारी गैया कितनी दूर निकल गई। चलो गैया ने घेर ला।
3: चलो चलो चलो चलो जल्दी चलो भैया, जल्दी
4: चलो
3: जल्दी चलो।
0: हाँ भैया चलो। अच्छी बात बताइए, बाबा जी के चक्कर में लग गए तो हमारी गैया खो जाती।
4: भैया ठीक,
0: चलो भैया चलो
4: चलो।
0: हियो काली काजर होई
5: हमर रघुराम। हेलो पलाक, देख रहा दुनिया की झलक।
6: अभी आप सुन रहे थे राधा महादेव लीला। इसके लेखक थे गोवर्धन दास शर्मा, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की थी।

इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। लीजिए कुछ सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं विदुषी कंकना बनर्जी। आप सुनेंगे इनसे ख्याल गायन जो राग नंद में निबद्ध है। सारंगी पर है मुनीर खान और तबले पे गुलाम साबिर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी विदुषी कंगना बनर्जी। आपने सुना है इनसे ख्याल गायन जो राग नंद में निबद्ध था। तबले पर संगत कर रहे थे गुलाम साबिर और सारंगी पर मुनीर खान। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री

0: मंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization. In Uttar Pradesh, at least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. The firecracker manufacturing unit was reportedly being operated from a house situated in agricultural fields. President Draupadi Murmu has expressed grief over the loss of lives in the accident that occurred in Kaushambi. In a social media post, she conveyed condolences to the families of those who lost their lives in this unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to a mishap at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, Mr. Modi extended his condolences to those who have lost their loved ones. Prime Minister also prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister